एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 5:55 होने वाले हैं, माफ कीजिएगा 6 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और

0: प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको नजरिया विषय पर विचार सुनवा रहे हैं।
3: इस दुनिया की हर चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, अपने आप में पूर्ण और खास होती है। साथ ही वो एक बहुत बड़ी और रहस्यमय व्यवस्था का हिस्सा भी है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए हर चीज की अपनी अहमियत है और यही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई भी है। प्रकृति का हर कण, जीव, घटना, एक अदृश्य

0: धागे से जुड़ी हुई है। ठीक इसी तरह हर इंसान जीवन में अपने लक्ष्य, इच्छाएं और सपने लेकर चलता है। हमें लगता है कि हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हम सभी किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं, जिसे हम पूरी तरह देख या समझ नहीं पाते। हर एक व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के आधार पर चीजों को देखता है। हर नजरिया अपने तरीके से सही होता है, पर पूरी सच्चाई उससे कहीं बड़ी होती है। इसीलिए हमें दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा कई पहलुओं में छिपी होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि जो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो केवल एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हम ये महसूस करने लगते हैं कि असली उद्देश्य हमारी सोच से कहीं अधिक विशाल, गहरा और व्यापक है। ये एहसास हमें विनम्र बनाता है और हमें ये सिखाता है कि हर चीज को सीमित दृष्टि से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में रहता है। वो सोचता है कि सफलता, धन या प्रसिद्धि ही उसका अंतिम लक्ष्य है, लेकिन हमें अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों से आगे भी सोचना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज, प्रकृति और इस पूरी सृष्टि के लिए भी मायने रखता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन की नींव बन सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देखने पर जीवन एक जिम्मेदारी बन जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा हर कार्य, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, किसी न किसी बड़े प्रभाव का हिस्सा जरूर होता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को ईमानदारी, करुणा, धैर्य और समर्पण के साथ करना चाहिए। जीवन का पूरा अर्थ जान पाना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अर्थहीन हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम एक ऐसे महान उद्देश्य का हिस्सा हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। यही सोच हमें जागरूक, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है।
1: अभी आपने नजरिया विषय पर आज के विचार सुने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आराधना। आज की संगीतमय सुबह में आप सभी का स्वागत है। भक्ति के सागर में गोते लगाने और मन को शांति प्रदान करने वाली धुनें लेकर हम हाजिर हैं। आज का हमारा सफर श्रद्धा और भक्ति के विभिन्न रंगों से सजा है। आइए शुरुआत करते हैं शक्ति की आराधना से। आज के कार्यक्रम का पहला भजन समर्पित है माँ जगदम्बे को। दुर्गा जी या माँ की भक्ति का कोई भी दिन खास हो जाता है। उनकी स्तुति मन को नई ऊर्जा से भर देती है। पेश है माँ दुर्गा का भजन।

माँ की ममता और शक्ति के बाद आइए अब चलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ओर। कहते हैं जहाँ श्री राम का नाम होता है वहाँ भक्ति की सरिता अपने आप बहने लगती है। अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं राम प्रीति, एक ऐसा भजन जो प्रभु श्री राम के प्रति हमारे समर्पण को और गहरा करेगा।

प्रभु के नाम की मिठास के बाद अब बारी है उस भक्त की जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। आराधना के सफर में अगली प्रस्तुति बहुत ही विशेष है। इसमें हम गाएंगे और सुनेंगे गोविंद के गुण।

गोविंद की उस अनमोल लीलाओं और गुणों के बाद अब हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ रहे हैं जो जीवन का सत्य भी है और मोह का केंद्र भी। हम अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं और धन संपत्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि असली धन क्या है? अगली प्रस्तुति हमें याद दिलाएगी कि संसार की ये धन

सांसारिक धन तो आता जाता रहता है, पर जो सुकून प्रभु के चरणों में मिलता है उसका कोई मोल नहीं। आज की आराधना के अंतिम पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं। आइए अब अपने मन को बरसाने वाली श्री राधा रानी के चरणों में खुद को समर्पित करें। उनकी कृपा हो तो जीवन का हर कष्ट दूर हो जाता है। आज के समापन में सुनते हैं ये भक्ति वंदन।

राधे तेरे चरणों की धूल तो मिल जाए। सच में इसी भाव के साथ आज की आराधना अब यहीं पर संपन्न होती है। आज हमने आपको इस कार्यक्रम में सुनाए महेंद्र कपूर, अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, उदित नारायण, मोहम्मद रफ़ी और गीतांजलि के गाए भजन। उम्मीद है आज का ये सफ़र आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता से भर गया होगा। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह की मीठी धूप और हवा के झोंकों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो आज की बात में। मैं हूं आपके साथ विभू कृष्णा। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, जब भी दुनिया के किसी कोने में कोई युद्ध या संघर्ष होता है तो उसकी सबसे बड़ी कीमत किसे चुकानी पड़ती है। सरहदों पर बंदूकें चलती हैं, लेकिन अक्सर उनका सबसे दर्दनाक शिकार बनती हैं महिलाएं, बच्चे और निर्दोष लोग। जी हाँ, आज 19 जून है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये याद दिलाने का दिन है कि युद्ध के मैदानों में यौन हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, डर फैलाने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए। लेकिन सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? इस हिंसा के शिकार लोग सिर्फ शारीरिक चोट नहीं झेलते, वे समाज के तानों और उस गहरे मानसिक सदमे को भी तोड़ते हैं जिनकी कोई दवा नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत इसलिए की ताकि हम उन पीड़ितों को, उनके साहस को सलाम कर सकें जो इस भयानक अंधेरे से लड़कर बाहर निकले हैं। आज का दिन सिर्फ दुख जताने का नहीं बल्कि आवाज़ उठाने का है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां पीड़ित को नहीं बल्कि अपराधी को शर्मिंदा होना पड़े। कानून अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन बदलाव हमारी सोच से शुरू होगा। अगर हम अपने आसपास किसी भी रूप में हिंसा के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम शांति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। आइए आज के दिन हम संकल्प लें कि हम उस आवाज़ के साथ खड़े होंगे जो न्याय मांग रही है, क्योंकि चुप्पी कभी भी समाधान नहीं हो सकती। श्रोताओं, हमारे शरीर में बहने वाला खून हमारे जिंदा रहने की वजह है। इस खून में मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं गोल होती हैं जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही कोशिकाएं गोल ना होकर हसिया यानी सिकल की आकार की हो जाएं तो क्या होगा? जी हाँ, आज के दिन विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस है। ये एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी आनुवंशिक बीमारी किसी के जीवन में कितना बड़ा दर्द ला सकती है। जब ये कोशिकाएं सिकल के आकार की हो जाती हैं तो ये रक्त वाहिकाओं में फंसने लगती हैं, जिससे अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में असहनीय दर्द, बार बार इन्फेक्शन और कमजोरी की शिकायत होती है। अक्सर लोग इसे गलतफहमी के कारण छुआछूत समझ लेते हैं, लेकिन आज एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें ये समझना होगा कि सिकल सेल कोई संक्रमण नहीं, ये एक आनुवंशिक स्थिति है। यदि हमारे आसपास कोई सिकल सेल से ग्रसित है तो हमें सहानुभूति और सहयोग की आवश्यकता है, न कि भेदभाव की। चलिए अब रुख करते हैं वक्त के उस पहिए की तरफ जो हमें इतिहास के गलियारों में ले जाता है। आज के दिन देश और दुनिया में कई बड़ी वजहों से ये दिन दर्ज हुआ है। आज ही के दिन साल 1981 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। भारत का पहला प्रायोगिक भू स्थिर संचार उपग्रह एप्पल आज ही के दिन फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसने भारत के टेलीकॉम नेटवर्क की नींव को मजबूत किया। वैश्विक स्तर पर 19 जून सन 1910 को अमेरिका के वॉशिंगटन में पहली बार आधिकारिक तौर पर फादर्स डे मनाया गया, जिसकी शुरुआत सोनोरा स्मॉट डॉड ने अपने पिता के सम्मान में की थी। और आज हिंदी भाषा के उन्नायक, प्रखर चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित माधवराव सप्रे की जन्मतिथि है। आपको बता दें कि उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। और आज भारतीय राजनीति के प्रमुख चेहरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जन्मदिन है। आज की बात में बस इतना ही। अब विभु कृष्णा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं देशगान।

क्या आता है। माँ की अलमारी से निकली वो रेशमी साड़ी, दादाजी का कुर्ता, त्योहारों के पकवान या ढोल नगाड़ों की वो थाप जो हमारे पैर थिरकने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, यही तो है हमारी एथनिसिटी, यानी हमारी सांस्कृतिक पहचान। दुनिया में हजारों एथनिक ग्रुप्स हैं और हर एक की अपनी अनूठी भाषा, पहनावा और कला। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि भले ही हम कितने ही आधुनिक हो जाएं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही हमें मुकम्मल बनाता है। भारत जैसे देश में जहां हर कोस पर पानी और चार कोस पर वाणी बदलती है, वहां विविधता में एकता का ये उत्सव और भी गहरा हो जाता है। चाहे कश्मीर की पश्मीना हो, बिहार की मधुबनी कला या दक्षिण की कांजीवरम साड़ी या हमारे कुमाऊं का पिछौड़ा, ये सब हमारा गौरव है। तो आज के दिन अपनी संस्कृति पर नाज कीजिए, अपना कोई पारंपरिक पहनावा पहनिए और गर्व से कहिए कि हमें अपनी विरासत से प्यार है। क्योंकि इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर की सांस्कृतिक विविधता, भारतीय कलाओं, ऐतिहासिक विरासत और विभिन्न मानव जातियों की सभ्यता को संरक्षित करने का है। आपको बता दें कि दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। उन्हीं संस्कृतियों को लोगों के बीच बढ़ावा देने और उनका सम्मान करने के लिए हर साल 19 जून को विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन विश्व जातीय दिवस भी मनाया जाता है, जो कई देशों में विशेष तौर पर मनाते हैं। विश्व संस्कृति के सभी तरह के संरक्षण उद्देश्य से इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसमें कला, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासतें, सभ्यता जैसी चीज़ों को संरक्षित करके उसका बचाव करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका संरक्षण, यही इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। अपनी पारंपरिक पोशाक, अपनी बोली और अपनी लोक संस्कृति को पहनना सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ाव है। आप में से कितने लोग आज अपनी पारंपरिक टोपी, झुमके या कोई विशेष पहनावा पहन कर निकले हैं? अल्मोड़ा की गलियों से लेकर पहाड़ के सुदूर गांव तक हमारी एथनिक पहचान ही हमारी ताकत है। आइए आज के दिन अपनी उस पुरानी धुन को गुनगुनाएं, जिसे शायद हम इस आधुनिकता की दौड़ में कहीं भूल गए थे। विविधा के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

अभी आपने देशगान सुना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रही हैं। आइए आप सुनते हैं विविधा। विविधा के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभू कृष्णा। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, आज हम बात करेंगे उन धागों की जो हमें जोड़ते हैं, चाहे वो हमारी संस्कृति के धागे हों या हमारे शरीर में बहता हुआ रक्त। आज 19 जून है। आज का दिन दो तरह से खास है, एथनिक डे और विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। आज सबसे पहले बात खूबसूरत मौके की, विश्व एथनिक दिवस। एथनिक शब्द सुनते ही हमारे

0: औपचारिकक्रे आनीता सी यु प्राय त्रिशत प्रतिशत महिला सी सह इतोपि अवोचत यत् अस्याः योजनायाः अंतर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः 25% न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिंदी भाषायां एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रं इति संबोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञभावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मंत्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तरप्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,2,84,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,00,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,07,41,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधि इत्याख्ये 10वें संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में PM विकसित भारत रोजगार

0: कार्य योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अब से कुछ ही क्षणों उपरांत 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 129। गांधी चर्चा सुबह 7:50 पर प्रसारित किया जाएगा। दिन के 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार। आज चर्चा होगी जीवन शैली बदलें स्वास्थ्य के लिए और सरकार के 12 वर्ष पर मुद्रा योजना पर चर्चा। साथ ही सुनिएगा यौन हिंसा रोकथाम में न्याय और समाज की जिम्मेदारी विषय पर श्रीमती भावना जोशी अधिवक्ता अल्मोड़ा से प्रीति जाटव की बातचीत। दिन के 1:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1310 आप सुनेंगे। किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती की बातें सुनेंगे दिन के 2:30 पर, जिसमें आज वार्ता का विषय होगा मक्का।

की फसल की वैज्ञानिक खेती और वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजेश कुमार। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। आज की बात में चर्चा होगी नशा मुक्त बने हमारा समाज और विश्व एथनिक दिवस की। सिने जगत से सुनिएगा अभिनेता अमरीश पुरी और टॉम वॉल्टर के बारे में। उत्तरायण शाम 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आज चर्चा होगी संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और योग के द्वारा मानसिक व संज्ञानात्मक स्वास्थ्य। ग्राम जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। आज की बातें में सुनिएगा फसलों में नाशीजीवी प्रबंधन, साथ ही चर्चा होगी मुर्गी पालन व्यवसाय से लाभ और पीएम सम्मान निधि।

शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर, लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, लोकमंजरी 11:30 पर, लोकसुर कार्यक्रम में दिन के 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत और शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम के तहत। और सुगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा सुबह 10:05 पर सबरंग, दिन के 1:15 पर सुगम संगीत, रात्रि 8 बजे सबरस और रात्रि 10 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत। भक्ति संगीत का कार्यक्रम शाम 6:41 में प्रसारित किया जाएगा। और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार में आप सुनेंगे एक ही कलाकार, 11 बजे सैनिकों के लिए, दिन के 12 बजे मेरी पसंद में, दिन के 2:45 पर फिल्म संगीत में सुनिएगा एक ही फनकार को, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत, शाम 7:40 पर फिल्म संगीत में, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 129।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उन्नीते हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

0: अभी आपने श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग सुना। गायक कलाकार थी कविता कृष्णमूर्ति और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में आप देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक।

पहले मुख्य समाचार। उपनल कर्मचारियों के हित में कैबिनेट का बड़ा फैसला, समान वेतन की कट ऑफ तिथि बढ़ने से हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। प्रदेश के कुछ जिलों में टीबी मुक्त भारत अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव सत्य, एक सप्ताह में शत प्रतिशत जांच पूरी करने के निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों के साथ एसआईआर अभियान की समीक्षा की, बूथ लेवल अधिकारियों को सहयोग करने की करी अपील। और बागेश्वर में राज्य अतिथि गृह निर्माण की तैयारियां तेज, 45 नाली भूमि पर बनने वाली परियोजना की डीपीआर जल्द होगी तैयार। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने की निर्धारित कट ऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर वर्ष 15 अक्टूबर 2024 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अनुसार उपनल

0: कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ 1 मार्च 2026 से प्रभावी रूप से दिया जाएगा। बैठक में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। प्रदेश की साक्षरता दर 98% से अधिक होने के आधार पर राज्य सरकार अब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने चारधाम यात्रा के दौरान संचालित घोड़ा खच्चरों के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। साथ ही एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले गोवंश के विकास और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पायलट परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य के कुछ जिलों में टीबी मुक्त भारत अभियान की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जिलों में मरीजों की सामान्य जांच का आंकलन 60% से कम रहा, वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए। मुख्य सचिव ने अगले एक सप्ताह के भीतर मरीजों की सामान्य जांच का कार्य 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए उच्च संवेदनशील और जोखिम वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर पर अभियान की प्रतिदिन समीक्षा और निगरानी करने तथा कम स्क्रीनिंग वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्क्रीनिंग बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में पंजीकरण बढ़ाने, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के समय पर पहचान और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मॉनसून को देखते हुए दुरुस्त क्षेत्रों की चिन्हित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेटिंग होम्स में स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि शहर में सीवर लाइन, पेयजल लाइन और विद्युत लाइनों के भूमिगत कार्य कटिंग अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों की विस्तृत सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि आवश्यक समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति दी जा सके। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को विभिन्न विभागों के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की जमीनी स्थिति के आधार पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में मोबेवाला क्षेत्र में ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक और राइजिंग मेन बिछाने के कार्यों में देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारी को वेतन रोकने की चेतावनी दी। दून एनक्लेव एक्सटेंशन क्षेत्र में प्रस्तावित नलकूप निर्माण के लिए 15 दिनों के भीतर भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। भंडारी बाग ओवरब्रिज निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अगस्त माह से पहले परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को यातायात की सुविधा मिल सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआर पुरुषोत्तम ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों से अभियान में बूथ लेवल अधिकारियों को सहयोग करने की अपील की है। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में गणना फार्म वितरण का कार्य 99% तक पूरा हो चुका है, जबकि अभी तक 20% गणना फार्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटाइजेशन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 8 जून से शुरू हुए अभियान के तहत BLO के फील्ड सत्यापन में अभी तक 76,754 मतदाता ASD श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से इन मतदाताओं को खोजने का प्रयास करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

0: बागेश्वर में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह निर्माण परियोजना को राज्य सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना की कार्य योजना की समीक्षा की गई और अधिकारियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR शीघ्र तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट।
1: प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह बागेश्वर तहसील के ग्राम ठेला पालन में लगभग 45 नाली भूमि पर विकसित किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य पर्वतीय जिलों में सरकारी कार्यक्रमों, VIP आगमन और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बैठक में सचिव ने निर्देश दिए कि DPR तैयार करते समय वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने अतिथि कक्षों, बैठक कक्षों, प्रशासनिक कक्षों तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का समुचित प्रावधान करने को कहा। साथ ही भवन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने और निर्माण कार्य को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। सचिव ने परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, आवश्यक फर्नीचर, विद्युत उपकरणों और अन्य आधारभूत सुविधाओं को भी DPR में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेज DPR के साथ संलग्न किए जाएं, ताकि स्वीकृति प्रक्रिया में विलम्ब न हो और निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जा सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से सोनिया मिश्रा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। धामी कैबिनेट बैठक की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। मजौला लिखता है, उत्तराखंड बन गया पूर्ण साक्षर राज्य, उपनल कर्मचारियों को दी गई बड़ी राहत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, उपनल कर्मचारियों को समान वेतन के लिए अब कट ऑफ डेट अक्टूबर 2024 तय। रेस्क्यू किए गए बच्चों को रखने के लिए चिन्हित होंगे आवास, इस शीर्षक के साथ अमर उजाला खबर में लिखता है, नशे के शिकार बच्चों के लिए इलाज के लिए जिला अस्पताल में बेड होंगे आरक्षित। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की विशेष बैठक में लिया गया फैसला। मॉनसून की तैयारियों की खबर पर नवोदय टाइम्स की सुर्खियां हैं, मॉनसून से पहले अलर्ट मोड में शासन प्रशासन। प्रमुख सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने की आपदा तैयारियों एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा, लंबित निर्माण कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। और मौसम की खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, मैदानों में चढ़ा पारा, आज प्रदेश भर में बारिश के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, उपनल कर्मचारियों के हित में कैबिनेट का बड़ा फैसला, समान वेतन की कट ऑफ तिथि बढ़ने से हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। प्रदेश के कुछ जिलों में टीबी मुक्त भारत अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव सख्त, एक सप्ताह में शत प्रतिशत जांच पूरी करने के निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVR से पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों के साथ SIR अभियान की समीक्षा, बूथ लेवल अधिकारियों को सहयोग करने की अपील। और बागेश्वर में राज्य अतिथि गृह निर्माण की तैयारियां तेज, 45 नाली भूमि पर बनने वाली परियोजना की DPR जल्द होगी तैयार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रहलाद सिंह मेहरा के गाए कुमावनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रहलाद सिंह मेहरा के गाए गीत।

0: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रहलाद सिंह मेहरा के गाए लोकगीत।

0: प्रहलाद सिंह मेहरा के गए इसी गीत के साथ हमारा आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा।
1: महात्मा गांधी एक ओर अहिंसा के उपासक थे, अहिंसा को प्रचंड शस्त्र मानते थे, वहीं दूसरी ओर वे एक महान समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक और विचारक के रूप में उनका योगदान अनुपम है। उन्होंने व्यक्तिगत उत्थान, विशेषतः आत्मिक उत्थान पर बल दिया। जातिवाद, छुआछूत, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, नशाखोरी और सांप्रदायिक भेदभाव जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों के सुधार हेतु रचनात्मक संघर्ष किया। उनका सपना था अहिंसक समाज।
2: समाजवाद एक सुंदर शब्द है, और जहां तक मुझे मालूम है, समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं, न कोई नीचा न ऊंचा। किसी व्यक्ति के शरीर में सिर सबसे ऊपर होने के कारण ऊंचा नहीं होता, और न पैर जमीन को छूने के कारण नीचे होते हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर के सब अंग बराबर होते हैं, वैसे ही समाज रूपी शरीर के सारे अंग भी समान होते हैं। यही समाजवाद है।

0: सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखने के साथ साथ बापू सभी धर्मों का सम्मान करते थे।
1: जब तक मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता कि सभी धर्म समान हैं, और जब तक मेरे मन में दूसरे धर्मों के प्रति भी वैसा सम्मान का भाव नहीं जगता जैसा अपने धर्म के प्रति है, तब तक चारों ओर के इस घनघोर संघर्षमय वातावरण में मैं जीवित ही नहीं रह सकता।

अभी आप गांधी चर्चा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000

0: करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान,
1: पीएम किसान। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
4: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: चन, चन।

0: अभी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और खास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
3: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
4: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
3: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
5: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया।

0: अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला। तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
5: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर

0: अभी आपने पंडित कुमार गंधर्व का राग अहिर भैरव में गया ख्याल सुना। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वह समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों और औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की

0: बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरी घाट और निहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कराईकल में भी तेज वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में तूफान के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब हम हाजिर हैं आपके ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस और फरमाइशी पत्रों के साथ आपके अपने कार्यक्रम गीत निर्झर में। अपनी मिट्टी की महक से जो जुड़ा रहता है वो हर दौर में अपनी पहचान बना लेता है। विश्व एथनिक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। हमारी संस्कृति, हमारे पहनावे और हमारी परंपराओं का जश्न मनाने के इस खास दिन पर आप सभी का फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में स्वागत है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी विविधता में ही हमारी असली खूबसूरती है। आज के इस विशेष अंक में हम उन सदाबहार गीतों को सुनेंगे, शामिल करेंगे अपनी फरमाइश में, जो भावनाओं और खुशबू की गहराई को समेटे हुए है। हमारी पहली फरमाइश आई है गांव की उन पगडंडियों से जहां सादगी ही जीवन है। फिल्म नदिया के पार का ये गीत जैसे ही बचता है हमें अपने गांव के खेत खलिहान याद आ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं ये पहला फरमाइशी गीत आप सभी की नजर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभु दयाल, बिहार से वलीउल्लाह, आसमानाज और राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार और हिमांशु सुधार। हेमलता और जसपाल सिंह का गाया ये गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

चलिए श्रोताओ, अब रुक करते हैं उस जगह का जहाँ हर गली का अपना एक किस्सा है, फिल्म चितचोर का एक ऐसी याद जिसे हर कोई अपने जहन में संजो कर रखना चाहता है। यशुदास का गाया ये गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं। अम्बालागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा, पूजा परिहार और जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, सचिन वायाल। मौताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, रिसोड से कुमारी सानवी देशमुख, सरवत देशमुख। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

श्रोताओं, कहते हैं कि जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तब हमें उन लोगों की कमी सबसे ज्यादा खलती है जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। कार्यक्रम में अब फिल्म गुरु का ये गीत रूह को छू लेने वाला है। एआर रहमान, चिन्मय और साथियों की आवाज में ये गीत, गुलजार का लिखा हुआ और एआर रहमान का संगीतबद्ध किया। इस गीत को सुनना चाहते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाहिर, महराज जहां। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है बिजनौर से हलवाई ज्ञान शेरकोट से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी बिट्टू, साजिदा रानी, हिना कौसर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, हर्ष आहूजा। नर्मदा पार मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, और सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार वोडाना। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

श्रोताओं, अब हम इस महफिल में एक ऐसी फरमाइश लेकर आए हैं, एक ऐसी रचना जो खामोशियों के बहुत करीब है। फिल्म लिबास का ये गीत किसी दबे हुए एहसास की तरह है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। लता मंगेशकर का गाया ये गीत, गुलजार की शब्द रचना और आरडी बर्मन साहब का संगीत निर्देशन। फरमाइश है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से, बलिया से ओम प्रकाश उषा, अमित कुमार राय, गाजीपुर से प्रतीक रोशनी, प्रांजल राय, अवधेश राय, प्रीति नवनीत। इसी गीत की फरमाइश आई है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से, तुलसी मस्कीन वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन मेघा, चंडीगढ़ से राहुल रचित केशु और रिधान खुराना। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, बाबू, प्रियांश, भावना देवांगन और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोगले। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

0: ने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जय। श्रोताओं, यादें अक्सर कोरे कागज की तरह होती हैं जिन पर वक्त अपनी कहानी लिखता जाता है। आइए कुछ और सदाबहार नगमों का आनंद लेते हैं। अगली फरमाइश एक ऐसे गीत की है जो सादगी और प्रेम का पर्याय है। फिल्म आराधना का ये गीत आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जैसे कल की बात हो। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा और SD बर्मन का संगीतबद्ध किया। सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से सुभद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल बजाज। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है मोहल्ला चौकुनटी बुलंद शहर से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बान और अब्बासी परिवार। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

इंसानी रिश्तों के उतार चढ़ाव को इससे बेहतर शायद ही किसी और गीत में पिरोया गया हो, जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म गाइड का ये गीत दर्शन और संगीत का एक अद्भुत संगम है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र के बोल और एसडी बर्मन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं पुटानी चौक नरहन स्टेज से लल्लन मिश्रा, उदयकांत, अमन पारासर, आराध्या लल्लू पंडित, गजानन पारासर, छोटू और बी के सुरगनैया, वंदना नगर एयरपोर्ट रोड, गरीब नवाज कॉलोनी, इंद्र नगर, मध्य प्रदेश से हमारे पास फरमाइश आई है। पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक, नारायण भाव खर्चे का। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल, रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। और जमशेदपुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, इंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

0: करते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास, जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभू। श्रोताओं, एथनिक संगीत की बात हो और लोक धुन की गहराई का जिक्र ना हो, यह मुमकिन नहीं। अगली फरमाइश रुदाली फिल्म से, ये गीत सीधे रूह के तार छेड़ देता है। भूपेन हजारिका जी की आवाज में बसा दर्द और मिट्टी की सौंधी महक इस गीत में नजर आती है। संगीत भी उन्हीं का है और गीत लिखा है गुलजार ने। गीत की फरमाइश आई है जिला खंडवा ग्राम लोहारी से, राजेश कुमार धंजे, राहुल धंजे, विशाल, शीला, गायत्री। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है मानपुर से विजय रानी, महिमा वैद, नीतू वैद, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदर्श कुमार काले, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम, अकरम, अल्ताफ, बिहार से डब्लू, सोना मदीबा और दानिश, महताब, आफताब और मेराज अंसारी। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आपका गीत।

और श्रोताओं, अब हमारे पास एक ऐसा गीत की फरमाइश आई है जो जोश, जुनून और वतन की मिट्टी की याद दिलाता है। फिल्म गदर का ये गीत हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। इसे आवाज़ दी है उदित नारायण, अलका याग्निक और एस निहार ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया उत्तम सिंह ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, लाडो, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगुस भाविका सिक्का। इसी गीत की फरमाइश आई है सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा, बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमाली वली डोम डब्लू, और जेल रोड मथुरा से आसमा बेलदार, अकरम उल्लाह, ताजपुर मोरवा से मीना पुंजराज आर्यन, आरती आकर्षण, पिंकी रिंकी रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

श्रोताओं, आज विश्व एथनिक दिवस के सुनहरे सफर में हमने न केवल गीतों को सुना, बल्कि उन गीतों में छुपे हुए अपनी संस्कृति और जज्बातों के रंगों को भी महसूस किया। और अब समापन के लिए हमारे पास एक ऐसी फरमाइश आई है जो प्रेम और नज़ाकत की मिसाल है। यश चोपड़ा जी की फिल्म चांदनी का वो गीत जिसे सुनते ही आंखों के सामने चांदनी बिखेरती रातें और पहाड़ों की वादियों का मंजर याद आ जाता है। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाज़ों में ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा और शिवहरी का संगीतबद्ध किया। इस गीत को सुनना चाहते हैं कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहीन, सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, भूल चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल, राशिका, आकृति, वंशराज सिंह और एमएस अब्बासी, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा, सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, अमन, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत। श्रोताओं, इसी गीत को पसंद कर रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

श्रोताओं, मीठे बोलों के साथ ये सफर यहीं पूरा होता है। विश्व एथनिक दिवस का ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी कला, हमारे गीत और हमारी परंपराएं ही हमारी असली पहचान है। अल्मोड़ा की इन खूबसूरत वादियों की तरह ही आपका आज का दिन और आने वाला हर पल खुशियों से भरा हो। आज की इस महफिल में आप सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विभू कृष्णा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं

0: का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए आप पेश कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई नज़्म।

0: कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग, और आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया गीत।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
3: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
2: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
3: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
2: झगड़ा मिटाएं,
3: विश्वास जगाएं।
4: जागो ग्राहक जागो।
5: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास, जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। आइए अब आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं हंस राज हंस की गाई नज़्म।

शुभा मुद्गल के गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके प्रस्ताव के उपरांत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और आज विश्व के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। श्री धामी ने कहा, राज्य सरकार उत्तराखंड को योग, आयुर्वेद, वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। नई योग नीति के माध्यम से योग एवं ध्यान केंद्रों को प्रोत्साहन, योग प्रशिक्षकों को सहयोग तथा योग एवं वेलनेस आधारित रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से प्रतिदिन योग और स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन शैली अपनाने, नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने तथा योग के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रमुख सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में कल जिला कार्यालय सभागार देहरादून में मॉनसून से पूर्व तैयारियों और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान के नेतृत्व में संबंधित विभागों के अधिकारियों की ओर से मॉनसून की तैयारियों के दृष्टिगत संचालित विभिन्न कार्यों, संवेदनशील स्थल सहित विभिन्न तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की गई। इस दौरान प्रमुख सचिव ने मॉनसून शुरू होने से पहले सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही खनन गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मॉनसून अवधि के दौरान संवेदनशील स्थलों की नियमित निगरानी, पूर्व चेतावनी तंत्र की प्रभावी कार्यप्रणाली तथा राहत एवं बचाव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे जनहानि और संपत्ति की क्षति को न्यूनतम किया जा सके। मुख्यमंत्री उत्तराखंड की ड्रग्स फ्री देवभूमि के विजन को साकार करने के उद्देश्य से दून पुलिस की ओर से अलग अलग थाना क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाते हुए चौपाल तथा जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी को नशा न करने की शपथ दिलाते हुए नशा उन्मूलन से संबंधित पोस्टर वितरित किए गए और छात्र छात्राओं व आम जनमानस को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पुलिस टीम द्वारा उपस्थित लोगों को नशे के दुष्प्रभाव, उसके प्रमुख कारण तथा उनसे बचाव के उपायों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही सभी को से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स, यानी जिंदगी को हां कहे, नशे को ना कहे की शपथ दिलाई गई। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब से लौट रहे कुछ निहंग श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद और उसके बाद हुई हिंसक झड़प का राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है। घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से शांति, अनुशासन और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी श्रद्धालु को धार्मिक मर्यादाओं का पालन करते हुए यात्रा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार

0: के विवाद, उकसावे या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गतिविधियों से बचना आवश्यक है। श्री धामी ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। केदारनाथ धाम को स्वच्छ एवं कचरा मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की ओर से कैरी मी बैग अभियान को श्रद्धालुओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अभियान के तहत यात्रियों को अपने साथ लाए गए प्लास्टिक और अन्य गैर जैविक कचरे को धाम में ना छोड़कर वापस नीचे लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सहभागिता से करीब एक महीने में ही 2 टन कचरा धाम से नीचे लाया जा चुका है, जिसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा, अभियान ने जनभागीदारी आधारित कचरा प्रबंधन का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है और लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के क्रियान्वयन को चिन्हित करने के उद्देश्य से आज हल्द्वानी और सितारगंज के औद्योगिक क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करने के संबंध में कार्यवाही का प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आकाश वर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि कुमाऊं मंडल के लाभार्थियों को लगभग 2,35,00,000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर बहार।

सभी श्रोताओं को विभु कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे संगीत के सफ़र में एक ऐसी आवाज़ का पड़ाव है जिसने अपनी मखमली गहराई और रूहानी अंदाज से दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया। आज एक ही कलाकार में एक ऐसे कलाकार का जिक्र जो पार्श्व गायक भी थे और गज़ल गायकी की एक अलग पहचान भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेजोड़ भूपेंद्र सिंह जी की। भूपेंद्र जी की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, एक ऐसी गंभीरता जो सीधे रूह को छू जाती थी। जब वे गाते थे तो लगता था जैसे शब्द खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म मौसम की। गुलजार साहब के शब्द, मदन मोहन जी का संगीत और भूपेंद्र जी की वो जादुई आवाज़, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रातें। इस गीत को सुनते हुए आज भी ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो।

श्रोताओं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि उनकी आवाज़ में वो फुर्सत और वो यादें कितनी साफ नज़र आती थी? उनकी गायकी का एक और अनूठा पहलू था, अकेलापन। फिल्म घरौंदा के उस गीत को याद कीजिए, वो दर्द, वो यथार्थ जो उन्होंने एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में के ज़रिए बयां किया। वो आज भी हर उस व्यक्ति का साथी है जो कभी खुद को तन्हा महसूस करता है।

श्रोताओं, सुर बहार के एक ही कलाकार में आज हम एक ऐसी आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें गज़ल की नज़ाकत, गीतों की मिठास और भावनाओं की गहराई समाई हुई थी। भूपेंद्र सिंह। महानगरों की भीड़ में अकेलेपन का एहसास इस खूबसूरती में इस गीत के साथ इंसाफ किया।

और आइए अब फिर वो सिलसिला जो उन्होंने गज़ल के मन से सिनेमा तक पहुंचाया, फिल्म बाजार का वो कालजयी गीत करोगे याद तो हर बात याद आएगी। भूपिंदर सिंह जी ने जिस सहजता से इस गज़ल को गाया वो आज भी कई उभरते गायकों के लिए एक सबक है कि कैसे बिना किसी दिखावे के केवल भावनाओं से श्रोताओं को बांधा जाता है।

चलते चलते उनकी आवाज़ की उस याद को ताज़ा करते हैं जो हमें हमेशा अपने करीब महसूस होती है। जब भी हम उन्हें सुनते हैं तो लगता है जैसे वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। भूपिंदर सिंह।

श्रोताओं, अब धीरे धीरे वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। आज सुरबहार के एक ही कलाकार में हमने आपको सुनाए भूपिंदर सिंह के गाए गीत। आज का ये सफ़र आपको भूपिंदर सिंह जी के किस गीत की याद दिला गया या उनका कौन सा गीत आपको किसी की याद दिला गया, हमें ज़रूर बताइएगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुरबहार कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब फौजी भाई सुने अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: कार्यक्रम सुन रहे सभी फौजी भाइयों, जय हिंद।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगाह

मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत अभी आपने सुना आंखें फिल्म से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का गीत आतिफ असलम की आवाज़ में। इशरत कामिल के लिखे गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया गीत फिल्म वीर से। गुलजार के लिखे गीत को आवाजें दी हैं रूप कुमार राठौर, श्रेया घोषाल और सुजैन डिमेलो ने।

कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं पीके फिल्म का गीत शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। स्वानंद किरकिरे के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शांतनु मोइत्रा ने।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं सलामे इश्क फिल्म का गीत कैलाश खेर की आवाज में। शब्द रचना समीर की है और संगीत निर्देशन किया है शंकर एहसान और लॉय ने।

और आइए अब कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं माय नेम इज़ खान फिल्म का गीत, शफाकत अमानत अली की आवाज़ में। शब्द रचना निरंजन अयंगर की है और संगीत निर्देशन किया है शंकर एहसान और लॉयली।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए गोपाल बाबू गोस्वामी का गाया लोकगीत।

0: कुमाऊनी लोकगीत आपने सुना दीवान सिंह कनवाल के स्वर में।
1: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
0: लोक सुर में लीजिए अब सुनिए गढ़वाली लोकगीत। कलाकार हैं योगंबर दत्त पोली और साथी।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोता आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय सुन रहे हैं कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर, जिसमें आज आपने कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत को सुने ही है। और अब इसी क्रम में हम आपको एक बहुत मशहूर प्यारा सा कुमाऊनी लोकगीत सुनवाने जा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है शंकर उप्रेती और माहेश्वरी बिष्ट ने।

0: अरे दिखे हो थोड़ी सा ज्यादा
1: नहीं
0: अरे गागरी को ठंडो पड़ी दी जाग कूली।

और अब श्रोताओं, लोक सुर कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं एक गढ़वाली लोकगीत के साथ। गायिका है अनीशा गुसाई।

श्रोता अभी सुन रहे थे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं। इस समय श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरी पसंद में। श्रोताओं, कोई भी फिल्म जिस तरह एक नायक के बिना पूरी नहीं हो सकती, वैसे ही खलनायक के बिना भी मुकम्मल नहीं हो पाती। जिस तरह अभिनेताओं ने फिल्म जगत में अपनी विशिष्ट अदायगी से अपनी खास छाप छोड़ी है, वैसे ही खलनायकों ने भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अपने अलग अंदाज, अपनी खास अभिनय क्षमता के दम पर अपनी खास पहचान बनाई है। आज श्रोताओं, हम खलनायक का जिक्र कर रहे हैं तो आप ज़रूर इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किसी खलनायक को ही लेकर आए हैं मेरी पसंद में, जो अपने विशिष्ट अभिनय कौशल के दम पर फिल्म जगत में मशहूर हैं। नाम है आशीष विद्यार्थी, और आज खास तौर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। तो आशीष विद्यार्थी को उनके जन्मदिन पर हम अपने कार्यक्रम की ओर से अनेक असीम अनंत शुभकामनाएं देते हैं।

जी हाँ, ज़िंदगी का ये सफ़र यूँ तो इतना आसान नहीं होता है। मुश्किलें आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत ना हारने वाले को एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। और ऐसे ही किरदार का नाम है आशीष विद्यार्थी। श्रोताओं, आशीष विद्यार्थी का जन्म 19 जून 1962 को केरल के कुन्नूर में हुआ था। उनके पिता गोविंद विद्यार्थी एक मलयाली थिएटर आर्टिस्ट थे, जबकि उनकी माँ रीवा विद्यार्थी एक मशहूर कथक नृत्यांगना थी, जिनकी जड़ें राजस्थान और पश्चिम बंगाल से जुड़ी थीं। इस समृद्ध परिवार में आशीष का बचपन थिएटर और कला के बीच बीता, तो जाहिर है उन्हें कला की बारीकियां बचपन से ही मिली। छोटी ही उम्र में वो दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से इतिहास विषय में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। और इसके बाद आशीष विद्यार्थी ने भारतीय विद्या भवन के मेहता विद्यालय में एक्टिंग और ड्रामेटिक्स की ट्रेनिंग ली और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने थिएटर में अपनी प्रतिभा को निखारा संवारा और इसी ने उनके अभिनय करियर की नींव रखी। श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे, जिन फिल्मों के गीत हम आपको इस समय मेरी पसंद में सुनवा रहे हैं, इन फिल्मों में आशीष विद्यार्थी ने अपनी खलनायकी से, अपने ख़ास अभिनय से अपने को उन्होंने इन फिल्मों के ज़रिए एक ख़ास तरह से उन्होंने स्थापित किया। और भले ही ये गाने उन पर नहीं फिल्माए गए हैं, लेकिन ये फिल्म जो है उनकी जो है अभिनय क्षमता से सजी फिल्में हैं।

सुधो आशीष विद्यार्थी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1986 में कन्नड़ फिल्म आनंद से की, तो वहीं बॉलीवुड में उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म थी द्रोहकाल, जो कि साल 1994 में रिलीज हुई। और इस फिल्म में शानदार अभिनय के दम पर वो न केवल दर्शकों की पसंद बने बल्कि उनके किरदार ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलवाया। इसके बाद कई जानी मानी फिल्मों का वो हिस्सा बने और इन फिल्मों में शामिल हैं 1942 अ लव स्टोरी, बाजी, नाजायज, बिच्छू, हसीना मान जाएगी, कहो ना प्यार है, जोड़ी नंबर वन, अक्स, इश्क, खुफिया जैसी कई फिल्में हैं। एक लंबी फहरिस्त है उनकी फिल्मों की। और उनके कुछ यादगार किरदारों को हम याद करें तो बिच्छू फिल्म में याद कीजिए, इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी का अभिनय कमाल का रहा और एक खूंखार विलन देवराज खत्री का किरदार इस फिल्म में उन्होंने निभाया और खूब ख्याति पाई। रानी मुखर्जी, बॉबी देओल लीड रोल में थे और आशीष विद्यार्थी के किरदार को आज भी इस फिल्म के जरिए दर्शक याद करते हैं।

श्रोतो, आशीष विद्यार्थी के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने बांग्ला सिनेमा की बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री शकुंतला बरुआ की पुत्री राजोशी बरुआ से विवाह किया। राजोशी विद्यार्थी भी टीवी अभिनेत्री रही हैं, रेडियो जॉकी है और गायिका भी हैं। पीलू विद्यार्थी के नाम से भी लोग उन्हें जानते हैं और कई धारावाहिकों में छोटे पर्दे पर वो नज़र आई हैं। एक इनका बेटा है अर्थ विद्यार्थी। 21 साल के खुशहाल वैवाहिक जीवन के बाद इन्होंने आपस में सहमति से तलाक ले लिया और साल 2023 में 57 साल की उम्र में आशीष विद्यार्थी ने एक बार फिर विवाह किया असम की बिजनेस वुमेन फैशन डिज़ाइनर रूपाली बरुआ से।

श्रुतो आशीष विद्यार्थी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, मराठी, उड़िया और अंग्रेजी समेत 11 भाषाओं में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें फिल्म इस रात की सुबह नहीं के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजा गया। और साउथ सिनेमा की बात करें तो AK-47, वंदे मातरम और नंदी जैसी फिल्मों में उनके किरदारों को खूब वाहवाही मिली। आशीष विद्यार्थी की खासियत ये है कि वो हर किरदार में जान

डाल देते हैं। और साल 2022 में उनकी फिल्म आई गुड बाय। इस फिल्म में एक अलग ही किरदार में वो नज़र आए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना के साथ उनकी भूमिका को खूब सराहना मिली।

श्रोताओं, कई किरदार हैं जिन्हें हम जितना याद करें वो और भी याद आएंगे। वास्तव फिल्म याद कीजिए, इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी का निभाया विठल काणिया का किरदार दर्शक शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। संजय दत्त के साथ आशीष विद्यार्थी के अभिनय की खूब सराहना हुई। हालांकि वास्तव फिल्म में इस किरदार की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरकर भी अपने किरदार को यादगार बना दिया आशीष विद्यार्थी ने।

श्रोतों, आशीष विद्यार्थी केवल खलनायक की छवि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और फूड ब्लॉगर भी हैं। पिछले कुछ सालों से आशीष विद्यार्थी सोशल मीडिया पर अपने फूड ब्लॉगिंग अंदाज से भी चर्चा में बने रहते हैं। वो देश विदेश की गलियों में चाय की टपरी से लेकर स्थानीय व्यंजनों तक का स्वाद चखते हैं और अपने अनुभव अपने चाहने वालों के साथ शेयर करते हैं और फिल्मों में भी अभी सक्रिय है। तो आज आशीष विद्यार्थी को उनके जन्मदिन पर हम एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। आज इतना ही मेरी पसंद में। अंजू पांगती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। बहनें अब सुनेंगी घर संसार।

0: स्वागत है बहनों आप सभी का। हाजिर हूँ मैं लेकर आपका अपना कार्यक्रम घर संसार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी प्रीति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं हमारी सभी बहनें स्वस्थ होंगी, खुश होंगी। इसी कामना के साथ चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों आपकी चेहरे की ये मुस्कान आपको पता है आपकी सबसे बड़ी शान है, इसे खोने मत दीजिएगा कभी। इसी में बसती क्योंकि आपकी अपनों की जान है। मैंने तनाव को कहीं अलविदा और सेहत से नाता जोड़े क्योंकि आपकी एक हंसी ही हर बीमारी का समाधान है। मैंने कहते हैं एक औरत जब मुस्कुराती है तो घर का हर कोना खिल उठता है, जब वो चलती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। लेकिन ज़रा सोचिए बहनों, अगर उस औरत की कदमों में थकान हो और उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई हो तो क्या हो, तो क्या वो घर सच में महक सकता है? जी नहीं ना। मैंने आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कानों के रास्ते सीधी आपके दिल तक पहुंचेगा। मैंने आज हम बात कर रहे हैं जीवन शैली बदले स्वास्थ्य के लिए। हम महिलाएँ पूरे घर की सेहत का बीमा तो मुफ्त में कर देती हैं, है ना बहनों, लेकिन अपनी सेहत की रसीद काटना भूल जाती हैं। हम सब रोज़ सुबह उठकर एक ही दौड़ में भाग रहे होते हैं, काम, परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां और बहुत कुछ, और ये सब संभालते संभालते एक चीज़ पीछे छोड़ देते हैं, जानती हैं क्या? खुद की सेहत। हम अक्सर उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो बहनों आज मैं आपको बताऊंगी जीवन शैली बदलने के कुछ आसान से तरीके जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में शामिल कर सकती हैं। बहनों सबसे पहले ज़रूरी है मी टाइम, यानी कि खुद के लिए समय निकालना, जो कि बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दिन के 20 मिनट ही अपने लिए निकालें, पर निकालें ज़रूर। उस समय में आप हल्की धूप में टहल सकती हैं, थोड़ा योगा कर सकती हैं, संगीत सुन सकती हैं या जो भी आपको पसंद हो। मैंने स्क्रीन टाइम कम कीजिए, उस समय को आप अपने बच्चों को, अपने पति को, बुजुर्गों के साथ बातचीत में बिताएं। इससे आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे, साथ ही मानसिक तनाव भी कम होगा। मैंने अक्सर हम महिलाएं तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाती जब तक दर्द असहनीय ना हो जाए। ये आदत होती है ना हम सभी में, अब हमें ये आदत बदलनी है। समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जाँच ज़रूर कराएँ। मैंने मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, इसलिए तनाव ना लें। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। सकारात्मक सोचें। मैंने चिंता करने से बीमारियां आती हैं और मुस्कुराने से हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, इसलिए ज़िंदगी में कितनी भी भागदौड़ हो अपने चेहरे की प्यारी सी मुस्कान को कभी कम मत होने दीजिए। मैंने बदलाव कभी भी एक दिन में तो आता नहीं है, लेकिन शुरुआत तो एक छोटे से कदम से ज़रूर होती है, तो क्यों ना उस कदम को आज ही बढ़ाया जाए, उसकी शुरुआत आज से ही की जाए। तो मैंने उम्र की इस दौड़ में खुद को पीछे मत छोड़िए, सेहत से नाता जोड़िए और बीमारी का मुंह मोड़िए। मैंने बातों का ये सिलसिला आपके साथ यूं ही बना रहेगा, लेकिन इससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
0: स्वागत है बहनों एक बार फिर से आप सभी का। मैंने आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करना जितना कठिन है उतना ही आवश्यक भी। हर साल 19 जून यानी आज ही के दिन को मनाया जाता है संघर्षमय यौन हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिवस उन लाखों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की पीड़ा को याद करने का अवसर है

0: यौन हिंसा का शिकार बने हैं। मैंने आज के समय में जरूरी है जागरूकता और जानकारी, तो आइए बातचीत के इसी क्रम में सुनते हैं यौन हिंसा रोकथाम में न्याय और समाज की जिम्मेदारी विषय पर श्रीमती भावना जोशी अधिवक्ता अल्मोड़ा से की गई ये बातचीत। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम घर संसार में।
1: धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि यौन हिंसा क्या होती है।
1: यौन हिंसा एक ऐसी हिंसा है जिस पर किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत दूसरे व्यक्ति द्वारा जोर जबरदस्ती से उत्पीड़ित करना, वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, और किसी तरीके से टॉन्डिंग करके जिसे हम कह सकते हैं इस तरीके से भी हो सकती है। उसे आवश्यक नहीं है कि उसमें शारीरिक टच ही जरूरी हो। तो यौन हिंसा का तात्पर्य जिससे उसकी मान मर्यादा पर कोई असर पड़ रहा हो।
0: मैम यौन हिंसा किन किन रूपों में सामने आती है।
1: यौन हिंसा कई तरीके से, बच्चों के संग यौन हिंसा, 18 वर्ष अधिक आयु के पुरुष या महिला वर्ग से यौन हिंसा, और यौन हिंसा मनुष्य के संग कई तरीके से हो सकती है। अश्लील चित्र दिखाना, अपने किसी अंग का प्रदर्शन करना, उसके अंग का प्रदर्शन करवाया जाना, या किसी बच्चे को खड़ा करके उसके अंगों का प्रदर्शन करते किसी को इंडिकेट करना, किसी व्यक्ति को उसको शारीरिक टच करके व्यक्ति की समाज में हंसी उड़ाते हुए बहुत लोगों के बीच में उसके पहनावे को या उसके चाल ढाल को या उसके परिवार के किसी सदस्य को लेकर के उसके विषय पर फपकिया कसते हुए, या बच्चा जिस समय कहीं जा रहा है पीड़ित व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर खड़े हो जाना जो उसके लिए बाधा कारक है, उसे दूर से गलत निगाहों से देखना भी यौन हिंसा के अंतर्गत आएगा।
0: मैम क्या यौन हिंसा पुरुषों के साथ भी होती है।
1: यौन हिंसा महिला पुरुष दोनों वर्गों पर होती है। पुरुष वर्ग से भी यौन हिंसा की जाती है, कई दफे जोर जबरदस्ती पुरुष वर्ग पर भी होती है। पुरुष जब प्रताड़ित होता है तो वो चीजें जगह नहीं है, और पुरुष वर्ग में भी हिंसा कई तरीके से होती है, महिलाओं के द्वारा भी की जाती है, पुरुष के द्वारा ही पुरुष पे यौन उत्पीड़न किया जाता है।
0: मैम अगर किसी व्यक्ति के साथ यौन हिंसा होती है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए।
1: जब किसी व्यक्ति के संग यौन हिंसा होती है तो उस सबसे पहले उसने इस बात को अपने घर में जरूर बताना है। उसके बाद साथ साथ ही उसने इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने या कोई महिला संगठन, महिला समूह को इस बात को जरूर बता देना। सर्वप्रथम कदम उसका यही होता है।
0: मैम कोई अन्य व्यक्ति भी उसके लिए आवाज उठा सकता है।
1: यौन हिंसा ही एक ऐसा केस है जिसके लिए तीसरे किसी व्यक्ति की FIR दर्ज हो जाती है, क्योंकि यौन हिंसा में अगर पीड़िता या पीड़ित जो है वो अपनी बात कहने में असक्षम है। कभी कभी क्या होता है कि मूक बधिर के संग गलत काम हो जाता है, वो अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं। मान लो किसी घर में काम करते हैं या किसी के संग रहते हैं, वो अपने भावों से उनसे अपनी बात अपने उस मालिक से कह पाते हैं या अपने संरक्षक से कहते हैं, तो वो उनकी बात थाने में ले जाकर के कह सकता है। और कई बात है, कई जो बोल सकते हैं वो अपनी बातें रख सकते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते, शर्म लाज के मारे नहीं बता पाते हैं। तो वो अपने माँ बाप को, अपने संरक्षक को, अपने मित्र को, अपने जिसने कभी किसी, मान लो किसी ने किसी के संग दुर्घटना होते देखी है, तो वो बंदा खुद भी थाने जाके इस चीज की रिपोर्ट उसने करनी चाहिए, और ये सामाजिक दायित्व है उसका करने का। नहीं करते हैं तो उसकी गलती है, देखने के बाद भी नहीं करने वाले।
0: मैम जैसे कि अगर FIR कराई जाती है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कि क्या होता है उसके बाद।
1: जब FIR दर्ज हो जाती है तो उसका मेडिकल कराया जाता है, बच्चे का, वो लड़का है लड़की, अगर उसको सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। उसकी जब अगर मेडिकल भी जब उसका होता है उस व्यक्ति के समक्ष होता है जिसके संग वो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है, और उसकी बातें बंद कमरे में उससे सुनी जाती है। पुलिस वाले भी उसके संग जो है एज ए पुलिस ड्रेस में बात नहीं करेंगे, उसको ये माहौल दिया जाएगा कि वो एक पारिवारिक माहौल में है, पुलिस थाने में है या कोई वकील है उसके सामने, वकील ड्रेस में है, ये चीजें नहीं हुई। जो व्यक्ति उसमें दोषी है उस व्यक्ति को पीड़िता के सामने नहीं लाया जाता है, और जो मेडिकल जब कराया जाता है पूर्ण विश्वास के संग उसके माँ बाप के सामने या उसके संरक्षक के सामने या किसी के भी संग वो अपने को सुरक्षित महसूस उसके समक्ष आने पर तभी मेडिकल कराया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं बहुत गोपनीय तरीके से, और जो भी व्यक्ति उसका केस लड़ रहा है या उसके केस में किसी तरह की मदद कर रहा है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा ये चीजें हैं कि वो उसकी बातों को कहीं बताए, उसका नाम क्लोज नहीं करेगा, अखबारों में प्रकाशित नहीं करेगा, उसके नाम को लेकर के वार्ता नहीं होगी। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, इसकी प्रक्रिया रूप से बड़ी गोपनीय तरीके से चलते।
0: मैम ये न्याय दिलाने में कानून की भूमिका सबसे आगे होती है, तो कानून में यौन हिंसा के लिए क्या क्या कानूनी अधिकार दिए गए हैं।
1: यौन हिंसा में कानूनी अधिकार बहुत से हैं। हमारे बच्चों के संग जब यौन हिंसा होती है तो पॉक्सो एक्ट बना हुआ है। कार्यस्थल में आपके संग कोई गलत काम होता है तो पॉक्सो एक्ट बना हुआ है। इसके अतिरिक्त पुराने समय से कई धाराएं चली हुई आ रही हैं। ये कानूनी अधिकार परिस्थितियों के अनुरूप और केस की आयु सीमा सब देखते हुए उस हिसाब से।
0: मैम आप एक अधिवक्ता होने के नाते काफी लंबे समय से महिलाओं से जुड़े मामलों को देखते आ रहे हैं।

0: आपको कौन कौन से मामले अधिकतर दिखाई देते हैं जो हिंसा के होते हैं?
1: अब मुझे लंबा टाइम हो गया प्रैक्टिस करते। पहले हम जो हिंसा देखते थे, मामले जो कोर्ट तक पहुंच पाते थे, वो थे आपका बलात्कार के केसेस आते थे 376 के मामले, या हम हिंसा जो देखते थे पीड़िता जो होती थी अपने पति से पीड़ित होती थी
0: जी,
1: पारिवारिक माहौल से पीड़ित होती थी, मानसिक यौन हिंसा यही नहीं कि सामाजिक दायरे पर होती है, परिवार में सबसे ज्यादा देखी हमने कि परिवार के अंदर रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों से भी बहुत ज्यादा हिंसाएं देखी थी। और अब जब से लोग खुल के बोलने लगे हैं आपका पॉस और पॉक्सो एक्ट में, तो अब कार्यस्थल की देख रहे हैं लोगों के संग छेड़छाड़, लिखत में, तस्वीर में, बातों में, डॉनिंग में, छूने में, इस तरीके से मामले आते हैं। इसी तरीके से पॉस्को में आता है आपका छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला करके ले जाना, उनसे बातें करना, उनके द्वारा बातें पहुंचा के दूसरे व्यक्ति से गलत संबंध करना, इस तरीके बहुत से मामले जो अब प्रकाश में आ रहे हैं।
0: मैम, ऐसे मामले में पीड़ित को न्याय कितने समय में मिल जाता है और क्या न्याय मिलता है?
1: पीड़ित को न्याय मिलने के लिए इसमें समय करीब करीब 6 महीना साल भर के अंदर मामले किस तरीके से भी निपटा दिया जाए। तो जो पीड़िता के संग अत्याचार हुआ वो किस तरीके का हुआ है उसकी प्रकृति देखते हुए 3 साल की सजा भी है, 5 साल की सजा भी है, तो उस तरीके से वहाँ पर 20 साल से आजीवन कारावास मृत्यु दंड तक भी।
0: मैम, अक्सर ऐसे मामले होते हैं तो लोग कानून के पास आने से घबराते हैं, क्या उनकी ये घबराहट ठीक है?
1: ये सामाजिक मुद्दा है
0: जी।
1: इसमें क्या है, अभी हमारा समाज इतना खुला नहीं है, अभी मतलब जो पुरानी दकियानुसी बातें चलती हैं कि अगर आज बदनाम हो गई फिर शादी कैसे होगी, कल के दिन क्या बातें होंगी, लोग हमको किस नजर से देखेंगे, समाज हमें बहिष्कृत कर देगा, लोग हमें गांव वाले नहीं अपने संग उठने बैठने देंगे
0: जी।
1: तो ये कई चीजों का सामाजिक बहिष्कार का डर उन लोगों में रहता है। लेकिन आज पढ़े लिखा समाज है, महिलाएं या पीड़ित बंदा जो भी है वो अपने अधिकारों को समझने लगा है, जगह जगह विधिक प्राधिकरण के कैंप लगते हैं, गाँव गाँव में इस विषय में वार्ताएं होती हैं, पत्रिकाएं निकलती हैं, उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया जाता है, सामाजिक संगठन, महिला संगठन, हम लोगों के भी एक महिला संगठन है। तो आज जो है, आज व्यक्ति इस चीज को समझने लगा कि अपनी बात सामने न्यायालय तक ले जाना, समाज में ले जाने में कोई बुराई नहीं है और इसमें हमें न्याय मिलेगा। और समाज को पूरी तरह दूषित होने से रोकने के लिए आवश्यक है कि अपने पर अगर कभी कोई बात किसी वजह से भी आ जाती है तो उस बात के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, आगे आना चाहिए।
0: मैम, अगर कोई मानसिक रूप से यौन हिंसा का शिकार हो रहा है तो वो कैसे अपनी बातों को बताए?
1: उसके काउंसलिंग करवानी चाहिए, उसके एक्टिविटीज का अंतर आ जाएगा। माँ बाप, संरक्षक, उसके उठने बैठने, गुमसुम रहना, कम बोलना, इधर अपने पे ही खोए रहना, कई चीजों उसके एक्टिविटीज में अंतर आएगा। जो एक्टिविटीज अगर ऐसी दिखाई पड़ती है तो आवश्यक है कि काउंसलिंग कराई जाए।
0: मैम, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति भी कानून से न्याय पा सकता है?
1: मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति भी कानून से सहायता पा सकता है। जब हम केस लड़ते भी हैं तो ये हम दावे में भी लिखते हैं कि शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित हूँ और मुझे इसका हर्जाना थारने मानसिक पीड़ित का दिया जाए
0: जी। देखिए ना मैम, अक्सर समाज पीड़ित को ही दोषी ठहराता है,
1: पीड़ित को ही कसूरवार बताने का इस समाज में बहुत पुरानी प्रचलन है और यही वजह था कि आज तक हमारा समाज दबा हुआ था और बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उनके हाव भाव से दिखाई पड़ता है उसमें पीड़िता के। और अगर घर समझदार है, माँ बाप समझदार है तो समझ जाते हैं मेरे बच्चे के संग कुछ हो रहा है, पूछते हैं, अपने तरीके से बात करते हैं। लेकिन आज बच्चा पढ़ा लिखा है, आज समाज बहुत खुल चुका है, आज बच्चे खुल के इस बातों को कह रहे हैं। घटनाएं पहले भी घटती थी लेकिन बता दिया जाता था, कहती नहीं थी, लेकिन आज माहौल थोड़ा बदल चुका है, जरूरत अभी और है बदलने की। मुख्य वजह ये भी है कि आज माएं भी पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन आज माँ बाप कहते हैं नहीं, अगर गलत हुआ है तो उसके खिलाफ लड़ो, तुम्हें दबने की जरूरत नहीं है, गलत तुम्हारे संग हुआ है न कि तुमने किया। और ऐसे माँ बाप अगर है तो बहुत अच्छी बात, समाज में सुधार।
0: अगर पीड़ित गरीब है तो मुफ्त में कानूनी सहायता मिल सकती है?
1: बिल्कुल, पीड़ित को मुफ्त में कानूनी सहायता मिल सकती है, विधिक प्राधिकरण नासा बने हुए हैं, जहाँ पर वो अपने जगह पर उसकी केस चल रहा है उस जिले के विधिक प्राधिकरण पर वो अपना एप्लीकेशन लगाएंगे कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मैं इससे खर्च करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे निःशुल्क वकील उपलब्ध करा दिया जाए और मुझे कानूनी सहायता दी जाए।
0: मैम, युवाओं को इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी?
1: युवाओं को हमें कहना होगा, सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएं, मानसिक स्थिति जो है दूषित न हो, गलत तरफ न झुके, किसी तरीके की सामाजिक अगर दोष दिखाई पड़ रहा है, समाज में भी अगर गंदगी, उसको सुधारने की वो खुद आगे बढ़े, उसको सुधारने के लिए तो ऑटोमेटिकली है कि वो खुद गलतियां नहीं करेंगे।
0: मैम, हिंसा किसी भी तरह से होती है तो उसमें परिवार की कितनी भूमिका होनी चाहिए?
1: परिवार के उनके प्रति सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। यौन हिंसा जिस बच्चे के संग भी, जिस बालक बालिका के संग भी हुई है, वो बच्चा शिकार हुआ है न कि वो दोषी है। परिवार का माहौल उसके प्रति उसी तरीके से सिंपैथिक चलना चाहिए जैसे अन्य बच्चों के संग वो अपना व्यवहार कर रहे हैं या परिवार के अन्य सदस्यों के संग व्यवहार कर रहे हैं। उस बच्चे को ये चीज का एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि तेरे संग कुछ हुआ है, नॉर्मल व्यवहार उसके संग रहना चाहिए।
0: मैम, आज कानूनी जागरूकता हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्या आप इसे कितना मानती हैं?
1: बिल्कुल, आज आप

0: कि रेडियो के माध्यम से बातें जा रही हैं, आपके जो संस्थाएं अपने अपने सेमिनार करती हैं, इन सब माध्यमों से कानूनी जानकारी आज सब बच्चों को स्कूलों में जगह जगह जाकर के जागरूकता दिलाई जा रही है।
1: मैम, कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी सभी श्रोता सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को यह संदेश देना चाहूंगी कि अपने परिवार का माहौल स्वच्छ रखें, अपने समाज का माहौल स्वच्छ रखें, पड़ोस का माहौल स्वच्छ रखें। जरूरी है कि पहले अपने पुरुष वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है और उनको अच्छे संस्कार देना, उनकी सोच डेवलप करना और अच्छे सोचों की तरफ उनको ले जाना, और साथ में बच्चों को शुरू में ही गुड टच बैड टच का ज्ञान देना।
1: मैम, कार्यक्रम के माध्यम से आपने यौन हिंसा के विषय में इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी। कार्यक्रम से के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी यौन हिंसा रोकथाम में न्याय और समाज की जिम्मेदारी विषय पर श्रीमती भावना जोशी अधिवक्ता अल्मोड़ा से की गई बातचीत। और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

स्वागत है बहनों एक बार फिर से आप सभी का। बहनों हमारा भारत देश सदियों से हुनरमंदों का देश रहा है। हमारे गांव हो या शहर, ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, जिनकी हाथों में कमाल का हुनर है, लेकिन अक्सर इन सपनों और हुनर के बीच एक बहुत बड़ी दीवार आकर खड़े हो जाती थी, वो है पैसों की कमी। इसी दीवार को गिराने और हर छोटे उद्यमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साल 2015 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। बहनों ये योजना कोई साधारण लोन योजना नहीं, बल्कि ये देश के छोटे दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों को, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बहनों, सिलाई कढ़ाई करने वाले कारीगरों और नए स्टार्टअप के लिए एक वरदान है। इस योजना की सबसे खूबसूरत बात यह है किसके तहत लोन लेने के लिए किसी

भी व्यक्ति को बैंक में कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, यानी आपका हुनर ही आपकी गारंटी है। इस योजना के तहत 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं, शिशु ऋण,

0: और नए स्टार्टअप के लिए एक वरदान है। इस योजना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके तहत लोन लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बैंक में कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, यानी आपका हुनर ही आपकी गारंटी है। इस योजना के तहत तीन तरह के ऋण दिए जाते हैं, शिशु ऋण, किशोर ऋण और युवा ऋण। बहनों, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो आप भारतीय नागरिक हों और साथ ही आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हों, और इसके लिए आपको ज़रूरी दस्तावेज चाहिए, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण, व्यवसाय का विवरण, बैंक के खाते का विवरण। आवेदन करने के लिए बैंक जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। बहनों, आप इस योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। बहनों, जब एक महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है। तो इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाएं ताकि हर वो इंसान जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है अपने सपनों को सच कर सके। बहनों, बातों का ये सिलसिला आपके साथ यूं ही बने रहेगा, लेकिन इससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: स्वागत है बहनों एक बार फिर से। बहनों, आज मैं आपकी अलमारी के उस कोने की बात कर रही हूँ जहाँ आपकी मम्मी या आपकी खुद की पुरानी बनारसी कांजीवरम सिल्क की साड़ियाँ रखी हुई हैं। वो साड़ियाँ इतनी पुरानी और खूबसूरत हैं कि उन्हें किसी को देने का मन तो नहीं करता, और फैशन पुराना हो गया है तो उन्हें पहनने का मन भी नहीं करता है। बहनों, होता है ना ऐसा। बहनों, आज है शुक्रवार, आज हमारे कार्यक्रम का खास अंक होता है फैशन फ्राइडे, और आज हम आपसे बात कर रहे हैं पुरानी साड़ियों का नया जादू, रीयूज और रीस्टाइल। तो चलिए आज उन पुरानी साड़ियों की पोटली खोलते हैं जो आपके घर की अलमारियों के किसी कोने में दबी हुई हैं, और उन्हें देते हैं एक बेहद मॉडर्न और ट्रेंडी लुक। बहनों, आप अपनी किसी भी पुरानी सिल्क या जॉर्जेट की बॉर्डर वाली साड़ी से एक लॉन्ग श्रग सिलवा सकती हैं। इसे आप किसी भी प्लेन कुर्ती के साथ या जींस या टॉप के ऊपर पहन सकती हैं। ये आपको एक इंडो वेस्टर्न और बेहद स्टाइलिश लुक देगा। बहनों, अगर साड़ी बनारसी है तो उसका बॉर्डर बहुत चौड़ा होगा, तो आप उससे एक घेरदार अनारकली सूट बनवा सकती हैं। साड़ी का पल्लू आपके सूट का दुपट्टा बन जाएगा, या फिर आप उसे हैवी ब्लाउज की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं अगर वो बॉर्डर थोड़ा हैवी है तो। बहनों, आप साड़ी के हैवी हिस्से से एक शॉर्ट जैकेट भी बना सकती हैं जिसे आप प्लेन लहंगे के साथ या फिर स्कर्ट के साथ पहन सकती हैं। ये त्योहारों और शादियों की सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रीयूज है। तो बहनों, इस वीकेंड पर अलमारी को साफ करिए और अपनी पुरानी साड़ियों को दीजिए एक प्यारा सा नया लुक, और खुद को बनाइए स्टाइलिश। तो कार्यक्रम में सुनते हैं फिर से एक प्यारा सा गीत।

बहनों, इसी के साथ समय हो गया है कार्यक्रम के समापन का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। बहनों, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी रेडियो सखी प्रीति जाटव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। देहरादून में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं से नियमित योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत साल में दो बार खिलाड़ियों की शारीरिक मानक योग्यता परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक शनिवार को होगा वर्चुअल प्रशिक्षण। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ धाम में चलाए जा रहे कैरी मी बैग अभियान को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। अब तक लगभग 2 टन कचरा धाम से नीचे लाया गया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से नियमित योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ, ऊर्जावान और अनुशासित युवा ही राज्य और देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं। वे आज पुलिस लाइन देहरादून में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और योग को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त अभियान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग, आयुर्वेद, वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
1: पूरे दुनिया के अंदर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने लगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, आज दुनिया के 190 से भी अधिक देश योग दिवस मनाते हैं और योग आज जन जन का योग, घर घर का योग बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूंकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं, ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए, योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।
0: प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की प्रगति पर अब पहले से अधिक बारीकी से नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों की शारीरिक मानक योग्यता परीक्षा यानी PSAT साल में 2 बार लिया जाएगा, जबकि प्रत्येक शनिवार को 2 घंटे का वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इससे खिलाड़ियों की क्षमता का बेहतर आकलन होने के साथ ही उनके प्रदर्शन में भी निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिला क्रीड़ा अधिकारियों को इन दिशा निर्देशों का तत्काल और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि प्रदेश का कोई भी प्रतिभावान खिलाड़ी आगे बढ़ने के अवसर से वंचित न रहे। खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। योजना के नियमों और चयन प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधनों पर अंतिम निर्णय होने तक चयन और अन्य सभी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के सुनियोजित विकास और स्थानीय युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कई बड़े कार्यक्रमों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्य में साहसिक पर्यटन को नई पहचान देने के लिए 18 प्रमुख आयोजनों का कैलेंडर भी तैयार किया गया है। साथ ही राज्य के 3,000 से अधिक युवाओं को पर्वतारोहण, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्रियाल का कहना है कि सरकार का लक्ष्य पर्यटन को केवल उद्योग नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का मजबूत आधार बनाना है।
2: बोर्ड की जब बैठक हुई है तो उसमें पूरे साल का हम लोगों ने एक कैलेंडर फाइनल किया है जिसमें अल्ट्रा मैराथन्स को तो हमने सम्मिलित किया ही है और साथ ही साथ आपने देखा होगा सूर्या देवभूमि चैलेंज के नाम से ट्रेल रनिंग भी हम लोगों ने करवाया था। उसको भी इसमें सम्मिलित किया है। और जितने भी एक्टिविटीज हम लोग सारे जनपदों में हम लोग करते हैं, चाहे हम नेशनल पैराग्लाइडिंग गेम्स की बात करें, एक्यूरेसी गेम्स की बात करें, चाहे उस कंपटीशन की बात करें या राफ्टिंग के संबंध में हो,

0: इसके संबंध में डिटेल में हम लोगों ने पूरे वर्ष का एक कैलेंडर जारी किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। कुंभ मेले के लिए स्वीकृत निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से तेजी से किए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में सड़क, पुल, पार्किंग और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए मेला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। इसी क्रम में अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने बैरागीवाला और श्रीयंत्र क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर कुंभ मेला मद से संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने दक्ष द्वीप और बैरागी कैंप को जोड़ने के लिए मायापुर स्केप चैनल का निर्माणाधीन स्टील गार्टर पुल का भी निरीक्षण किया। अपर मेलाधिकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं, ताकि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। केदारनाथ धाम को स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कैरी मी बैक अभियान को श्रद्धालुओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। नगर पंचायत केदारनाथ, हिलिंग हिमालयाज फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल की संयुक्त पहल से संचालित इस अभिनव अभियान के तहत अब तक लगभग 2 टन कचरा धाम क्षेत्र से नीचे लाया जा चुका है। एक रिपोर्ट।
3: कैरी मी बैक अभियान के तहत श्रद्धालुओं को अपने साथ लाए गए प्लास्टिक, पानी की खाली बोतलें, खाद्य सामग्री के रैपर और अन्य गैर जैविक अपशिष्ट को केदारनाथ धाम में ना छोड़कर वापस नीचे लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यात्रा मार्ग और धाम में तैनात कर्मचारी तथा स्वयंसेवकों द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों को स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि केदारनाथ धाम की स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन का दायित्व नहीं बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कैरी मी बैक अभियान ने लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ जनभागीदारी आधारित कचरा प्रबंधन का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा जिला प्रशासन भविष्य में भी इस प्रकार के पर्यावरण हितैषी पहलों को निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से केदारनाथ धाम की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने और हिमालय की प्राकृतिक विरासत को संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से प्रियंका मलिक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी मसूरी विधानसभा की ओर से देहरादून में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध जन, शिक्षाविद, चिकित्सक, अधिवक्ता, उद्योगपति, पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, जिससे देश में सुशासन और विकास का नया अध्याय लिखा गया है। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सभी नागरिकों से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं से नियमित योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत साल में 2 बार खिलाड़ियों की शारीरिक मानक योग्यता परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक शनिवार को होगा वर्चुअल प्रशिक्षण। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ धाम में चलाए जा रहे कैरी मी बैक अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। अब तक लगभग 2 टन कचरा

0: मात्रा धाम क्षेत्र से नीचे लाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। पहले आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का गीत भूपेन हजारिका के स्वर में।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोता भी सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। इस समय हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आज सुनिए कड़ी संख्या 1310।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
3: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, दल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ दल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र

0: और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को
1: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आकर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते

वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते।

का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी।

सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटी से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी

मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए

मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

0: तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।
1: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
2: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
3: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
1: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
4: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोता भी सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। शुरुआत कर रहे हैं गीता जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: उत्तराखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के

0: राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा

0: सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली NEET UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की

0: 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178289802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं और इस समय हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है मक्का की फसल की वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार।
4: किसान भाइयों, हमारे देश में खरीफ ऋतु में धान के बाद उगाई जाने वाली फसलों में मक्का का प्रमुख स्थान है। मक्के की उत्पत्ति स्थान मेक्सिको है। मेक्सिको से यूरोपियन देशों से होते हुए आज मक्का की खेती विश्व के अधिकतम देशों में की जाती है। भारत में कुल अनाज उत्पादन में मक्का का योगदान 9% है। मक्के का उपयोग खाने के साथ साथ स्टार्च, तेल, प्रोटीन, एल्कोहल, औषधीय सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र उद्योग, गोंद पैकिंग

एवं कागज उद्योग में किया जाता है। साथ ही साथ मक्के का प्रयोग पशुपालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन व्यवसायों में चारे एवं दाने के रूप में भी किया जाता है। भारत में कुल मक्का उत्पादन का 85% भोजन के रूप में, शेष 15% उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में मक्का उत्पादन का अधिकांश क्षेत्रफल वर्षा आधारित है। मानसून के अनियमित हो जाने के कारण फसल में जल की आवश्यकता की पूर्ति सिंचाई से करनी चाहिए। सिंचाई सही तरीके से ना करने के कारण मक्के की बढ़वार व उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में मक्का लगभग 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है। मक्का पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख फसल है, जिसकी खेती असंचित अवस्था में अनाज, भुट्टे, पॉपकॉर्न एवं हरे चारे के लिए की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मक्का की स्थानीय प्रजाति ही प्रचलन में है, जिसमें उत्पादकता कम होने के साथ साथ रोग व्याधि का प्रकोप भी अधिक होता है। मक्का की वैज्ञानिक खेती करके औसत उपज 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाई जा सकती है। मक्का की खेती मैदानी क्षेत्रों से लेकर 2500 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। मक्का की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई डोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। किसान भाइयों, अगर हम संस्तुत उन्नत प्रजातियों की बात करें तो तराई भावर एवं मैदानी क्षेत्रों में पंत शंकर मक्का 1, गंगा 2, गंगा 5, गंगा 11, सरताज, तरुण, नवीन, कंचन, नवज्योति, माही, प्रताप मक्का 4, पर्वतीय क्षेत्रों में हिम 129, वीएल 42, विवेक शंकर मक्का 5, विवेक शंकर 9, विवेक शंकर मक्का 15, विवेक शंकर मक्का 23, विवेक मक्का हाइब्रिड 25, विवेक मक्का हाइब्रिड 33, विवेक संकुल मक्का 11, विवेक संकुल मक्का 31, वीएल मक्का 16 एवं वरुण हैं। शंकर मक्का के लिए 240 ग्राम से 280 ग्राम बीज प्रति नाली, संकुल किस्मों के लिए 360 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति नाली की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, मक्का की बुआई करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि बीज अपने घर का प्रयोग कर रहे हैं तो बीज का शोधन अवश्य करें। बीज शोधन के लिए फफूंदी नाशक रसायन कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। बुआई पंक्तियों में ही करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के परिणामों के आधार पर करना चाहिए। किसी कारण मृदा परीक्षण ना हुआ हो तो शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के लिए 1 किलो 600 ग्राम नत्रजन, 1 किलो 200 ग्राम फास्फोरस एवं 800 ग्राम पोटास प्रति नाली, साथ ही मध्यम व देर से पकने वाली प्रजातियों के लिए 2 किलो से 2 किलो 400 ग्राम नत्रजन, 1 किलो 200 ग्राम फास्फोरस एवं 800 ग्राम पोटास प्रति नाली की दर से प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा एवं 1/3 नत्रजन की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें तथा शेष नत्रजन की मात्रा 2 बार में प्रयोग करें। प्रथम बार जब पौधे 2 फुट के हो जाएं तब तथा दूसरी बार फूल नर मंजरी निकलते समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी अधिकांश खेती जैविक विधि से की जा रही है। जैविक विधि से मक्के की खेती के लिए भली भांति सड़ी हुई गोबर की खाद 20 क्विंटल प्रति नाली की दर से एवं बुआई से 15 दिन पूर्व खेतों में डालकर गहरी जुताई करके छोड़ दें एवं समय अनुसार बीज की बुआई करें। अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है तो किसान भाई 4 से 6 पत्तियां आने पर पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई पौधे 2 फीट के हो जाएं तब, तीसरी सिंचाई जब मक्के में नर मंजरी निकलने लगे, चौथी सिंचाई भुट्टे निकलते समय एवं अंतिम सिंचाई दाने बनते समय करनी चाहिए। मक्का की खेती में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही गंभीर समस्या है। खरपतवार मक्के की फसलों के साथ उगकर भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों का 1/3

0: विभाग अकेले ही तेजी से ग्रहण करते हैं, जिसके कारण फसलों का के आवश्यक पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, जिससे फसलों की बढ़वार पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मक्का की उपज एवं गुणवत्ता में कमी आ जाती है। मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपी, हैंडहो एवं कुदाल का प्रयोग करना चाहिए एवं बुआई के 25 दिन बाद निराई गुड़ाई अवश्य कर दें। दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 35 से 40 दिन के उपरांत भी कर दें। साथ ही साथ पौधों पर मिट्टी भी चढ़ा दें। किसान भाइयों, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए एट्राजीन 50 WP की 40 ग्राम मात्रा को 10 से 12 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति नाली छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही एलाक्लोर, जो बाजार में लासो के नाम से बिकती है, की 1 मिलीलीटर दवा को 10 से 12 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति नाली बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें। मक्के की फसल में बहुत से कीट रोग लगने की संभावना रहती है। इन कीट एवं रोगों से बचाव के लिए किसान भाई कीटनाशी एवं रोगनाशी दवाओं का प्रयोग करें। अगर हम कीड़े की बात करें तो मक्के की फसल में तना छेदक कीट की सूढ़ियाँ तने में छेद करके उसे अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्यूनालफास 25 EC नामक दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रारोह मक्खी, यह एक बहुत छोटे आकार की मक्खी होती है, जिसके लार्वा फसल को हानि पहुंचाते हैं। ये पौधे की प्रारंभिक अवस्था में मध्य प्रारोह में घुसकर उसके भीतरी भाग को खाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेक्रान की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे निकलने के पश्चात छिड़काव कर दें। मक्का की खेती में पत्तियों का झुलसा रोग एवं तुलासीता रोग प्रमुख है। इस रोग से ग्रसित पत्तियों पर लंबे अंडाकार नाव के आकार के पीले भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में काले हो जाते हैं और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां झुलस कर सूख जाती हैं। पत्तियों के नीचे सतह पर सफ़ेद रुई के समान फफूंदी दिखाई देती है। रोगी पौधे में भुट्टे कम बनते हैं या बनते ही नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए इंडोफिल Z78 या इंडोफिल M45 की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। भुट्टों के छिलके जब अच्छी तरह सूख जाएं और दाने कड़े हो जाएं तो तुड़ाई कर लेनी चाहिए। तुड़ाई के पश्चात छिलके हटाकर भुट्टों को भली भांति सुखाकर दाने अलग कर लें। भंडारण से पूर्व दोनों को पुनः सुखाना अत्यंत आवश्यक होता है। मक्का के दानों में 12 से 14% तक नमी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नमी होने पर भंडारण में कीड़ों से नुकसान की संभावना अधिक रहती है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते समय किसान भाई दस्ताने एवं चश्मे का प्रयोग अवश्य करें और छिड़काव करने के बाद हाथ मुंह साबुन से अवश्य धो लें एवं रसायनों को छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। किसान भाइयों, इस प्रकार वैज्ञानिक विधि द्वारा मक्का की खेती करने से 1 क्विंटल से 1 क्विंटल 20 किलोग्राम प्रति नाली उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: मक्का की फसल की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार से खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज शाम 5:10 पर विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में रोजगार मेला 2026 का विज्ञान भवन नई दिल्ली से सजीव प्रसारण। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार संध्या 7:30 पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर में आज कलाकार होंगे नारायणी धर्मसक्तू और साथी। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, योग के द्वारा मानसिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य, इस विषय पर क्षेत्र संकलित कार्यक्रम प्रसारित होगा। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत सुनिएगा, आज लता मंगेशकर और उदित नारायण के गाए भक्ति वंदन सुनवाए जाएंगे। संध्या 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम में आज की बातें होंगी फसलों में नाशी जीवी प्रबंधन विषय पर, और चर्चा सुनिएगा मुर्गी पालन व्यवसाय से लाभ और पीएम सम्मान निधि। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में। फरमाइशी फिल्मी नगमों के प्रोग्राम आपके अनुरोध पर कार्यक्रम के तहत रात 9:30 पर और रात 10:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस हम लेकर आएंगे रात्रि 8:00 और रात 10:00। श्रोताओं को हम एक बार पुनः याद दिला दें, आज शाम 5:10 पर विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में रोजगार मेला 2026 का विज्ञान भवन नई दिल्ली से सजीव प्रसारण आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज आपको एक ही फनकार में सुनवाएंगे अभिनेत्री काजल अग्रवाल अभिनीत फिल्मों के नगमे। श्रोतों, काजल अग्रवाल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अभिनय प्रतिभा और मेहनत के दम पर दक्षिण भारतीय सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाई है। तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में सफल करियर बनाने वाली काजल आज दक्षिण भारत की सबसे लोकप्रिय और सफलतम अभिनेत्रियों में शुमार हैं। अपने 2 दशक लंबे करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। 19 जून 1985 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता व्यवसाय से जुड़े हैं और उनकी बहन निशा अग्रवाल दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री रह चुकी हैं। 19 जून का जिक्र किया तो श्रोता समझ ही गए होंगे आज है काजल अग्रवाल का जन्मदिन, तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उन्हीं की अभिनीत फिल्मों के नगमे सुनते हैं।

तो शुदो मशहूर अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के सेंट एंस हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज से पढ़ाई की और फिर किशनचंद चीलाराम कॉलेज से मास मीडिया में स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान उनका सपना एमबीए करने का था, लेकिन किस्मत उन्हें अभिनय की दुनिया में ले आई। काजल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2004 में हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना से की थी। इस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन की बहन की छोटी सी भूमिका निभाई। हालांकि ये रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहीं से उन्हें एक पहचान मिली और उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई।

इसके बाद साल 2007 में तेलुगु फिल्म लक्ष्मी कल्याणम से दक्षिण भारतीय सिनेमा में काजल ने कदम रखा और इसी साल रिलीज हुई फिल्म चंदा मामा ने उन्हें पहली बड़ी सफलता दिलाई और दर्शकों के बीच उनकी पहचान करवाई। साल 2009 काजल के करियर का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। निर्देशक एस एस राजमौली की फिल्म मगध

हीरा में उन्होंने रामचरण के साथ काम किया। इस फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई और उनके अभिनय को खूब सराहा गया। ये फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शामिल हुई और काजल रातों रात स्टार बन गई। मगधीरा की सफलता के बाद काजल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार कई सफल फिल्मों में काम किया। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शीर्ष अभिनेत्रियों में वो शुमार हो गई और हिंदी फिल्मी जगत में भी उन्होंने सफलता पाई।

रातों रात स्टार बन गई। मगधीरा की सफलता के बाद काजल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार कई सफल फिल्मों में काम किया। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शीर्ष अभिनेत्रियों में वो शुमार हो गई और हिंदी फिल्मी जगत में भी उन्होंने सफलता पाई। साल 2011 में प्रदर्शित हुई फिल्म सिंघम से इस फिल्म में उनके साथ थे जाने माने दिग्गज कलाकार अजय देवगन। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म भी सुपरहिट रही और हिंदी दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता भी खूब बढ़ गई।

श्रुतों, इसके बाद एक और फिल्म से काजल अग्रवाल को सफलता मिली और ये फिल्म थी स्पेशल 26। अक्षय कुमार के साथ वो इस फिल्म में नजर

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज फनकार थीं मशहूर अभिनेत्री काजल अग्रवाल। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सदाबहार फिल्में गीत।

सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजुपांग दिवस में नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक शोमू मुखर्जी की आज जन्म जयंती है। यूं तो वो बांग्ला फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहीं हिंदी सिनेमा जगत में भी अपनी बेमिसाल फिल्मों के जरिए उन्होंने खूब प्रसिद्धि पाई। आज उनकी जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धा नमन करते हैं और उनकी फिल्मों के चुनिंदा नगमों से सदाबहार फिल्म गीत सजाते हैं।

श्रोताओं, 19 जून 1943 को जमशेदपुर में जन्मे सोमू मुखर्जी अपने बेजोड़ काम के लिए मशहूर रहे हैं और उन्होंने मुख्य रूप से बांग्ला सिनेमा में काम किया और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया। मुख्य रूप से बांग्ला फिल्मों में काम करने वाले सोमू मुखर्जी का परिवार फिल्मी दुनिया से ही ताल्लुक रखता था। उनके पिता शशिधर मुखर्जी हिंदी सिनेमा में जाने माने निर्माता निर्देशक रहे। सोमू मुखर्जी की मां सती देवी, अशोक कुमार और किशोर कुमार जैसे नामी हस्तियों की इकलौती बहन थीं। तो जाहिर है सोमू मुखर्जी का भी बचपन से ही रुझान फिल्मों की तरफ रहा और उन्होंने निर्माण, निर्देशन और लेखन की दुनिया में अपना सफ़र शुरू किया और मशहूर हुए। साल 1972 की बात है। इस साल एक मशहूर फिल्म प्रदर्शित हुई, एक बार मुस्कुरा दो, और इसी फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात हुई मशहूर अभिनेत्री तनुजा से और दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा और

सुनो, शोमो मुखर्जी, मशहूर अभिनेत्री काजोल और तनिषा मुखर्जी के पिता रहे हैं। और फिल्मों की बात करें तो बतौर निर्देशक और लेखक उन्होंने कई चर्चित फिल्में जो हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं, जैसे कि एक बार मुस्कुरा दो 1972 में, 50-50 1981 में, लवर बॉय 1985 में, पत्थर के इंसान साल 1990 में, और इसके अलावा छैला बाबू फिल्म भी उनकी फिल्मों में से एक है।

साल 1994 की फिल्म संग दिल सनम भी शोमू मुखर्जी की चर्चित फिल्मों में से एक है। इसमें बीना बैनर्जी, किशोर आनंद, भानुशाली, अवतार गिल, सलमान खान, शुभा खोटे, मनीषा कोइराला, किरण कुमार, इमा लागू, रजा मुराद, आलोक नाथ जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपना अभिनय दर्शाया।

श्योमम मुखर्जी निर्देशित एक और मशहूर फिल्म रही 50-50। इस फिल्म में राजेश खन्ना, टीना मुनीम अभिनीत ये फिल्म थी। साल 1981 में रिलीज़ हुई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत इस फिल्म में था। ये सुनते हैं इस फिल्म का गाना।

शुभम मुखर्जी के वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाह के कुछ साल बाद वो अभिनेत्री तनुजा से अलग रहने लगे थे, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। और शुभम मुखर्जी अपनी बड़ी बेटी काजोल के बेहद करीब थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी 24 साल की उम्र में ही विवाह करे। वो काजोल और अजय देवगन के साथ हो रहे यानी उनके विवाह के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि काजोल पहले काम करे और बाद में विवाह। हालांकि तनुजा ने काजोल का साथ दिया और छोटे से समारोह में अजय देवगन और काजोल का विवाह संपन्न हुआ। हालांकि ये जोड़ी बेहद मशहूर जोड़ियों में गिनी जाती है। और फिल्मी करियर की बात करें तो शोमू मुखर्जी ने जितनी भी फिल्में बनाई हिंदी सिनेमा जगत के लिए वो मशहूर रहीं। और 10 अप्रैल 2008 को मुंबई में शोमू मुखर्जी इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए और छोड़ गए उन फिल्मों को जिनके ज़रिए हम हमेशा उन्हें याद करेंगे।

तो श्रोताओं, आज का सदाबहार फिल्मी की प्रोग्राम केंद्रित था मशहूर निर्देशक, निर्माता और लेखक शोमू मुखर्जी पर। आज सदाबहार फिल्मी गीतों का सफर यहीं तक। इजाजत दीजिए इंद्रपांति को।

सदाबहार फिल्मी गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे ये प्रसारण आप मीडियम वेव 187.3 मीटर यानी 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ आकाशवाणी के FM 101.5 MHz पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर, और हमारे आज के कलाकार हैं नारायणी धर्मसत्तु व साथी।

नारायणी धर्म सत्तु और साथियों के गाय इसी कमौनी लोकगीत के साथ हमारा आज का शैलस्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 5:10 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में रोजगार मेला 2026 का विज्ञान भवन नई दिल्ली से समापन तक सजीव प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लानरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यह हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he is having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that he'll be coming over here and say in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
2: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। व्हाट अ एनकरेजमेंट टू द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस। एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इज फ्रॉम ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम्स up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through, for getting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके। और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो। और शुरुआत से अब तक का सफर देखे तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
2: people will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let this Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
1: जी। और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके। और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी।
2: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli baar naukri mili. This component focuses directly on the young individuals

0: entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments, using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible. And even the, so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल सभी को फायदा है बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वही सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है
0: The Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today, across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का कुछ बेहतर करने का इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी 4 श्रम संहिताएं लागू महिला कर्मचारियों के लिए लाभ नारी शक्ति समान कार्य के लिए समान वेतन सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है ऐसा कह सकते हैं ना
0: एंड दैट्स व्हाट वी से यू नो ड्रीम्स आर बीइंग फुलफिल्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इन फैक्ट दिस एप्लीकेबल पीरियड फॉर दिस वन द वन व्हिच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 saal.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है बहुत खूबसूरत लग रहा है

0: रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
1: एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इट्स रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आपको देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
1: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is social security for all.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे. और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
1: Has been to generate more than 3.5 crore jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they are also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को फायदा है.
1: प्राइम मिनिस्टर इज अ मैन विद ड्रीम्स. ही वांट्स टू टेक इंडिया टू ग्रेट हाइट्स एंड ही हैज अचीव्ड इट ऑलमोस्ट. ही हैज टेकन इंडिया टू ग्रेट हाइट्स एंड राइट नाउ एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनली द वर्ल्ड इंडिया हैज गॉट रिकॉग्निशन एज अ मीडिएटर अमंग warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक

0: सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020, 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली, और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
1: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, when the money will go to 15 lakh people into their accounts. And they'll be getting their letters. And it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know.
0: Hmm.
1: Just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world.
0: Mm-hmm.
1: When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So we are going digital in every field. So we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, almost 700 people are seated over here, right up to the top.
0: Jitni capacity hai, puri bhari hui hai.
1: Yes, it's full. Not a single seat is empty. People are, they're all job seekers, and most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to their phone that they have got their letter.
0: Hmm. An amount will be transferred.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है, और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, यू नो, दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
0: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और
1: yes,
0: ये बहुत महत्वपूर्ण है.
1: yeah, yeah.
0: इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे, और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
1: And see, the beauty is that the person who'll be giving the bouquet is one of the young beneficiaries, and he'll be so happy in his heart that I'm getting a job and our Prime Minister has given this job to me.

0: So, and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan. And they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen, and then after that he'll be clicking on the button, the magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then of course the Prime Minister will give his speech, and I'm sure people are waiting for him to give his speech, because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and he's on the way, he's on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the plenary hall and the dais. Just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum, so that more and more people are employed and they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, the financially independent, and very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है. नहीं,
0: दैट्स ट्रू. एंड यू नो, आई अटेंडेड वन ऑफ दीज

0: days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and he will see that you come up in your life. So he said that low marks will not, it's not an end to anything. So that's why, you know, that's how he encourages. And the students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का, तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा. तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे. और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में. और बच्चों को लगता था परीक्षा, अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना. तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं. और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज़्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से.
0: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable, but not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and mingles with them, and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है.
0: Yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी.
0: Yeah.
1: है ना.
0: And see, who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India? Right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it. Today it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they've always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they've generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा, अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं,
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person.
1: Translate kiya.
0: Yeah, he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: Mm.
0: Yeah.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा।
0: यस,
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी। बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं। और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। नहीं,
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज, ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेस एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन, ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। दैट विल बी अ प्रिविलेज फॉर द बेनिफिशियरी, द स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: Duniya ke sabse lokpriya neta, mananiya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji ka.
1: Ek baar zordaar taaliyan ho jaye.
2: Devyo aur sajjano, taaliyon ki gadgadahat rukni nahi chahiye.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का आदर स्वागत एवं अभिनंदन।
0: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the desk.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
0: And now the welcome remarks
2: जोरदार तालियां हो जाएं।
0: by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्क

कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टैब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ जॉब क्रिएट हुए थे और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5

करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री

0: आपके रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2,00,000 करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1,00,000 करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1,00,000 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15,00,000 एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2,400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी, और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया।

0: मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार,

0: be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money, and the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
1: तालियों से स्वागत किया संदेश बेहतरीन क्षणकार भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
0: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
2: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
2: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आम तौर

योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरा नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता था ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थी के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं।

इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक

का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है,

ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित है। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें
हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां,
असफल होने पर भी आपको

0: हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय
1: प्रधानमंत्री। Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
5: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले में प्रदेश सरकार की बड़ी कार्यवाही, पूर्व नगर आयुक्त की बर्खास्तगी और तत्कालीन जिलाधिकारी के विरुद्ध दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने की संस्तुति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने मुलाकात की, प्रदेश में रेल परियोजनाओं को गति देने पर की गई चर्चा। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में उत्तरकाशी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस की विस्तृत जांच में आपराधिक षड्यंत्र और धोखेबाजी के माध्यम से भूमि क्रय विक्रय कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। मुख्य सचिव

0: की अध्यक्षता वाली राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति पर मामले में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और भूमि विक्रेताओं के विरुद्ध अभियोग दर्ज किए जाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन किया है। जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस प्रकरण में हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है। वहीं हरिद्वार के तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को अपने दायित्वों और कर्तव्यों के समुचित निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संस्तुति भेजी जा रही है। इसके अलावा उस समय कार्यरत SDM अजयवीर सिंह के विरुद्ध पर निंदा प्रविष्टि दर्ज करने तथा उनकी 3 वेतन वृद्धियां रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले के सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया था। प्रारंभिक जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर तत्कालीन जिलाधिकारी और पूर्व नगर आयुक्त सहित कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इसके बाद विशेष जांच और ऑडिट के माध्यम से पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल कराई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित सर्वोपरि है तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रदेश में रेलवे अवसंरचना के विस्तार, गतिमान रेल परियोजनाओं और भविष्य की रेलवे आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण, राज्य के समग्र विकास, पर्यटन, तीर्थाटन, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को राज्य की महत्वाकांक्षी और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना बताते हुए इसके कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कर्णप्रयाग बागेश्वर रेल लाइन और किच्छा खटीमा रेल लाइन परियोजनाओं को भी भविष्य की आवश्यकता व क्षेत्रीय संतुलित विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए इन पर कार्यवाही आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और आधुनिक व्यवस्थाओं का विस्तार पर बल दिया। साथ ही आगामी कुंभ और कांवड़ मेले को देखते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के डबल लाइन की दिशा में भी प्रभावी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता बताई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है उन पर पूरी गंभीरता से कार्य किए जाएंगे। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में आज उत्तरकाशी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद ने विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया ताकि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से मिल सके। बैठक में PMJSY और ब्रिडकूल के अधिशासी अभियंताओं के अनुपस्थिति रहने पर सांसद ने कड़ी नाराजगी जताते हुए दोनों अधिकारियों के स्पष्टीकरण लेने और उनके तबादले के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बागेश्वर विकासखंड में शिविर लगाया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। खंड विकास अधिकारी आलोक भंडारी ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है।
3: विकासखंड बागेश्वर में यह जन कल्याण शिविर आयोजित किया जा रहा है। सर्वप्रथम इसमें तो जो भारत सरकार 12 साल पूर्ण हुए हैं, जो उनकी उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में लोगों के मध्य प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर विभागीय योजनाएं हैं उनके संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार इस शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही जो अन्य शिकायतें लोगों की हैं उनको भी यहाँ पर टेकअप करेंगे और उनका भी यथाशीघ्र समाधान करने का प्रयास भी इस शिविर के माध्यम से किया जाएगा।

0: स्थानीय महिला ममता पांडे ने कहा कि इस तरह के शिविर गांव के लोगों के लिए काफी लाभदायक हैं।
1: यहाँ पर आज हमारे ब्लॉक में जन कल्याण शिविर लगा है, इसमें हमें आज यहाँ पर हर विभाग के लोग आए हैं, हर विभाग की जानकारी मिली। जैसे कि मुझे पशुपालन से है या कोई भी विभाग से कोई भी जो जानकारी मिलनी थी वो आज मेरी यहाँ पर पूरी हुई, और भी जो मेरे मन में जो शिकायत थी वो भी आज उसका भी समाधान हुआ।
0: भारतीय महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बागेश्वर जिले की प्रतिभावान खिलाड़ी प्रेमा रावत के चयन पर पूरे जिले में खुशी की लहर है। इस उपलब्धि पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बागेश्वर ने SBI तिराहे पर आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रेमा रावत की यह उपलब्धि न केवल बागेश्वर बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले में प्रदेश सरकार की बड़ी कार्यवाही, पूर्व नगर आयुक्त की बर्खास्तगी और तत्कालीन जिलाधिकारी के विरुद्ध दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने की संस्तुति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने मुलाकात की। प्रदेश में रेल परियोजनाओं को गति देने पर की गई चर्चा। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में उत्तरकाशी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से ही बोल रहे हैं। शाम की 6:41 हुए हैं। अब समय हो चुका है भक्ति संगीत का और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए इस भक्ति वंदन के साथ।

उदित नारायण के गाए इसी भक्ति वंदन के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 होने को है। कुछ देर बाद आकाशवाणी के देहरादून

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी कीर्ति जखमुला। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कारला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीना उत्तराखंड थे योग आयुर्वेद वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा को वैश्विक केंद्र बनाना खुनी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकारन बोली कि उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को सुदृढ़ीकरण, राज्य को विकास, पर्यटन, तीर्थाटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था थे नए गति दियालू। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का तहत टिहरी जिला का भिलंगना विकासखंड की 5 ग्राम पंचायतों को चयन करेगी आई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल पश्चिम बंगाल बटी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कारला। केंद्रीय कृषि मंत्री सिमराज सिंह चौहान ने बताई कि देश भर में 94 करोड़ से ज्यादा किसानों को बैंक खातों में सीधा 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अंतरित करे जाली। ये किस्त से 2,18,00,000 से ज्यादा महिला किसानों थे भी लाभ मिललू।
1: 20 जून पीएम किसान उत्सव दिवस, इस दिन 3:45 पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में ये निधि अंतरित करके दिया जाएगा।
0: कृषि मंत्रालय ने बोली कि पीएम किसान उत्सव दिवस का उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करे जाला, जामा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम से मुख्य कार्यक्रम में 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को शामिल होने की उम्मीद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि राज्य सरकार उत्तराखंड है योग आयुर्वेद वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा को वैश्विक केंद्र का रूप में विकसित करना खुनी निरंतर प्रयास करनी च। बोली कि नए योग नीति का माध्यम से योग और वेलनेस आधारित रोजगार का नए अवसर सृजित करे जाना छी। वो आज देहरादून स्थित पुलिस लाइन में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम थे संबोधित करना चाहे। ये अवसर पर श्री धामीन नागरिकों से प्रतिदिन योग थे जीवन को हिस्सा बनाने और योग का संदेश थे जन जन तक पहुँचाने को संकल्प लेने को आह्वान कराई। मुख्यमंत्री ने बोली कि रन फॉर योगा केवल एक दौड़ नीचे बल्कि स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और योग का प्रति जन जागरूकता बढ़ाने को सशक्त अभियान च। उन बोली कि यो पहल स्वस्थ समाज को निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम च।
2: पूरे दुनिया के अंदर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, आज दुनिया के 190 से भी अधिक देश योग दिवस मनाते हैं और योग आज जन जन का योग, घर घर का योग बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूँकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर पूरे महीने भर चलते हैं, ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए, योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।
0: प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन थे नए ऊंचाइयों तक पहुँचाना खुड़ी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों को सुनियोजित विकास और स्थानीय युवाओं का कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने चाहिए। ये के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं थे मंजूरी दिए गई। राज्य में साहसिक पर्यटन थे बढ़ावा देने खुनी 18 प्रमुख आयोजनों को वार्षिक कैलेंडर तैयार करे गई। ये कदगड़ी 3,000 से ज्यादा युवाओं थे पर्वतारोहण, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों को प्रशिक्षण प्रदान करे जालू, जहाँ से ऊखनी रोजगार का नए अवसर सृजित वाला। पर्यटन सचिव धीरज गर्बलयान बताई कि सरकार को उद्देश्य पर्यटन थे केवल एक उद्योग को रूप में विकसित करने नीचे बल्कि ये थे

0: साहसिक गतिविधियों को प्रशिक्षण प्रदान करे जालू जहाँ से ऊखनी रोजगार का नए अवसर सृजित वाला। पर्यटन सचिव धीरज गर्बलयान बताई कि सरकार को उद्देश्य पर्यटन थे केवल एक उद्योग को रूप में विकसित करण नीच बल्कि ये थे स्थानीय अर्थव्यवस्था थे सशक्त बनाण और व्यापक रोजगार सृजन को प्रभावी माध्यम बनाण च।
1: बोर्ड की जब बैठक हुई है तो उसमें पूरे साल का हम लोगों ने एक कैलेंडर फाइनल किया है, जिसमें अल्ट्रा मैराथन को तो हमने सम्मिलित किया ही है और साथ ही साथ आपने देखा होगा सूर्या देवभूमि चैलेंज के नाम से ट्रेल रनिंग भी हम लोगों ने करवाया था, तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया है। और जितने भी एक्टिविटीज हम लोग सारे जनपदों में हम लोग करते हैं, चाहे हम नेशनल पैराग्लाइडिंग गेम्स की बात करें, एक्यूरेसी गेम्स की बात करें, चाहे उस कंपटीशन की बात करें या राफ्टिंग के संबंध में हो, इसके संबंध में डिटेल में हम लोगों ने पूरे वर्ष का एक कैलेंडर जारी किया है।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को सुदृढ़ीकरण राज्य का समग्र विकास पर्यटन तीर्थाटन निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था तय नए गति प्रदान करलू। मूल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना थे राज्य की महत्वाकांक्षी और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना बतान दफे ये का कार्यो थे निर्धारित समय अवधि में पूर्व करण पर जोर दियाई। मुख्यमंत्री ने बोली कि यो परियोजना चार धाम यात्रा विशेष करके श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम आण वाला श्रद्धालुओं और पर्यटकों खुनी आवागमन थी अधिक सुगम सुरक्षित और आधुनिक बना ली। मुख्यमंत्री आज देहरादून में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार का नेतृत्व में आया एक प्रतिनिधि मंडल का दगड़ राज्य में रेलवे अवसंरचना को विस्तार पर चर्चा कराई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्णप्रयाग बागेश्वर रेल लाइन और किच्छा खटीमा रेल लाइन परियोजना थे भी क्षेत्रीय संतुलन विकास और भविष्य की आवश्यकताओं खुनी महत्वपूर्ण बतान दफे यूं पर अग्नय की कार्रवाई तेज करने को आग्रह काई। टिहरी जिला का भिलंगना विकासखंड की 5 ग्राम पंचायतों थे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का तहत चयनित करी गई। खंड विकास अधिकारी विपिन सिंघल बताई कि चयनित ग्राम पंचायतों में ठेला नैलचामी बूढ़ा केदार पाख और किरैत कमेर शामिल छी। खंड विकास अधिकारी बोलुंच कि विभिन्न विभागों का समन्वय से संचालित ये योजना का तहत आधारभूत सुविधाओं को विस्तार करे जालू जहाँ से ग्रामीणों थे बेहतर सेवाएं उपलब्ध वे सागली।
3: भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के घटक के रूप में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बिलंगना से 5 गांवों का चयन हुआ है, जिसमें से कि वो 5 गांव किरेट पार्क फोर्ट बूटा केदार और धनसाणी इन सब गांवों का चयन हुआ है, जिसके अंतर्गत की उन ग्राम पंचायतों में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का कोड, वहाँ की कुल जनसंख्या और उस ग्राम सभा में जितनी अनुसूचित जाति की जनसंख्या उसका हमें ब्यौरा देना है। इसके साथ साथ उनके कौशल विकास, महिलाओं के कौशल विकास के लिए स्वच्छता, आजीविका प्रवर्धन और लाभार्थी के लिए संपत्ति निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे।
0: कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार में अवस्थापना सुविधाओं को विकास कार्यों में तेजी लिए जाने च। मेला क्षेत्र में सड़क पुल पार्किंग और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़िया निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीका से पूरा करे जाना छी। ये क्रम में अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने बैरागी वाला और श्रीयंत्र क्षेत्र को निरीक्षण करी विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति को जायजा लियाई। उन संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं थे सभ्य परियोजना निर्धारित समय सीमा का भीतर और उच्च गुणवत्ता का दगड़ी पूर्व करने का निर्देश दिए। मूल कार्यदायी संस्थाओं थे निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में कै प्रकार की शिथिलता न बरती जाओ और सभ्य परियोजना स्टैम्प पर पूर्व करे जाओ। अंत में मुख्य समाचार एकदा फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कराला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड थे योग आयुर्वेद वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा को वैश्विक केंद्र बनाने को राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने बोली उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को सुदृढ़ीकरण राज्य को विकास पर्यटन तीर्थाटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था थे नए गति दियालू और प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श ग्राम योजना का तहत टिहरी जिला का भिलंगना विकासखंड की 5 ग्राम पंचायतों को चयन करी गई। ये का दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों को यूं अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुने सदस्य श्रोताओं के मैं राजेंद्र सिंह बिस्टेक नमस्कार। श्रोताओं स्वागत है आप लोगों हमारे ग्राम जगत कार्यक्रम में। कार्यक्रम में शुरुआत में कन्नू आप लोगों दगे आज एक बात। श्रोताओं कृषि में बेहतर उत्पादन प्राप्त करना के लिए फसलों के कीट रोग और खरपतवारन है बचाव बहुत आवश्यक हूँ। यह सभी नाशी जीवी फसलों वृद्धि गुणवत्ता और उत्पादन के प्रभावित करनी जैल किसानन के आर्थिक नुकसान उठान पड़ो यह कह लीजिए बखत पर इन और प्रभावी प्रबंधन करन बहुत जरूरी है। श्रोताओं नाशी जीवी प्रबंधन का उद्देश्य केवल कीट और रोगों नियंत्रण करन नहीं होन बल्कि उन और प्रकोप के आर्थिक नुकसान स्तर है तली बड़ा रखन थे। यह कह लीजिए समेकित नाशी जीवी प्रबंधन सबन है प्रभावी और टिकाऊ उपाय मानेगा। यह में जैविक यांत्रिक सांस्कृतिक और रासायनिक उपायों संतुलित उपयोग करेगा। श्रोताओं नाशी जीवी प्रबंधन के अंतर्गत किसानों के प्रमाणित और रोग मुक्त बीजों प्रयोग करन से फसल चक्र अपनौन बखत पर बुआई करन खेतों नियमित सफाई धरन और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग ले कीट और रोगों प्रकोप को कम करी जा सकूँ। खेतों नियमित निगरानी करवे शुरुआती अवस्थाई में कीट और रोगों पहचान करने ले बहुत जरूरी है। श्रोताओं जैविक नियंत्रण अंतर्गत मित्र कीटों जैविक कीटनाशकों फेरोमीन ट्रैप और प्रकाश प्रपंचों उपयोग करी जा सकूँ। यह सभी उपाय पर्यावरण अनुकूल होना दगाड़ दगाड़े उत्पादन लागत को ले कम करनी रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग तब करन चाहें जब जैविक उपाय पर्याप्त न हो। कीटनाशकों का चयन मात्रा और छिड़काव बखत कृषि विशेषज्ञों सलाह ले जरूर लेना चाहें। तो श्रोताओं अलग बखत में टिकाऊ कृषि लीजिए समेकित नाशी जीवी प्रबंधन की आवश्यकता और बढ़ गई है। यह न केवल फसल सुरक्षित रहनी बल्कि पर्यावरण संरक्षण मन की स्वास्थ्य की सुरक्षा और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई यह कह लीजिए हर एक किसान भाई बहनिया के नाशी जीवी प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को अपना भी स्वस्थ फसल और ज़्यादा उत्पादनों दिशा में काम करें। तो श्रोताओं ये थी आज एक बार अब कार्यक्रम में अगिन सुनो आप लोगों के नेहा मुनगली स्वर में गाई हुई और कुमाऊँ जी लोकगीत।

0: श्रोताओं, नेहा मुनगली के स्वर में गाई हुई है कुमाऊनी लोकगीता के बाद आप कार्यक्रम में आप लोगों के सुनोनू खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कृषि वानिकी विषय पर कृषि विभाग लमगाड़ अलमाड़ा विकास खंड प्रभारी श्री शुभम आर्याजी दगेड़ी राजेंद्र सिंह बिस्टे के क्षेत्र संकलित बातचीत। श्रोताओं, आज के समय में बदलती जलवायु, अनियमित वर्षा, बढ़ता तापमान, घटते जल स्रोत और प्राकृतिक आपदाएं किसानों के लिए एक बड़ी चुनौतियां बन रही है। ऐसे समय में कृषि वानिकी किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रभावी और टिकाऊ समाधान के रूप में सामने आ रही है। आज इसी संदर्भ में हमारे साथ क्षेत्र संकलित बातचीत में जुड़ रहे हैं कृषि विभाग लमगड़ा जिला अल्मोड़ा के विकास खंड प्रभारी श्री शुभम आर्या जी। तो आर्या जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कृषि वानिकी क्या है और यह पारंपरिक खेती से किस प्रकार अलग है।
1: सर, कृषि वानिकी एक सतत भूमि उपयोग प्रणाली है जिसमें कृषि की फसलों के साथ में वृक्ष, फलदार पौधे और पशुपालन, इन तीन चार चीजों को मिला के एक सिस्टम के आधार पर खेती की जाती है, जिससे कि जो कृषक होता है उसका उद्देश्य उत्पादन भी उसको अच्छा होता है। उससे जो आपने अभी बात करी जलवायु परिवर्तन की, जिससे जो उसकी जो हानि है उसका पर्यावरण का संरक्षण भी होता है और किसानों की आय में संतुलित वृद्धि भी होती है उससे। इसमें तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो यह होता है कि जो हमारी फसलें होती हैं उनके साथ में ये वानिकी कर ली जाए, या फिर पशुपालन के साथ में वानिकी कर ली जाए, या पशुपालन और कृषि मतलब फसलों का और वानिकी का तीनों का एक कॉम्बिनेशन बना के कर लिया जाए। इससे ये होता है कि हमारे पहाड़ों में भी है कि उससे चारे की उपलब्धता हो जाती है लोगों के लिए, प्लस फिर उसके बाद में जो भूमि का संरक्षण होता है, भूमि की जो मिट्टी होती है उसको, जो पेड़ होते हैं उनकी गहराई ज्यादा होती है तो उसको वो पकड़ के नीचे जड़ों में मजबूत रखते हैं, और जिससे कि उनके जो पोषक तत्व होते हैं नीचे वाले जो उनको पेड़ ले लेते हैं और ऊपर के जो पोषक तत्व होते हैं उनको हमारी फसलें और वगैरह ले लेती है।
0: जी,
1: पारंपरिक खेती से ये अलग इस तरह पारंपरिक खेती होती है सिर्फ हम एक फसल ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे खेत मतलब मृदा का जो संसाधन है हम उनका उचित उपयोग नहीं कर पाते, और जो ऊपर से ही हो रहा है और नीचे को कोई गहराई में कुछ नहीं जा रहा है, ना तो जल संरक्षण में जा रहा है, क्योंकि जब गहराई नीचे होगी तो उसमें पानी भी नीचे तक जाता है गहराई तक। तो जब वो नहीं होगा तो उससे मतलब हमारी भूमि जो होती है वो सड़न होती है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डाउन होती है, उससे मतलब कई चीजें और दिक्कत आती है। और हम इससे कृषि वानिकी से हमारे जो जमीन का जो कार्बन होता है या उसमें जो नमी संरक्षण होता है, जैव विविधता होती है, इन सब में भी वृद्धि होती है। जी सर।
0: जी, जैसे बात करें सर जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन का किसानों और खेती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
1: सर, जलवायु परिवर्तन का जैसे कि अगर हम अपने राज्य की बात करें उत्तराखंड की,
0: जी,
1: तो हमारे यहाँ अनियमित वर्षा हो रही है, कभी जब फसलों को जरूरत होती है तो सूखा हो जा रहा है, जब फसलों को जरूरत नहीं होती है तो उस टाइम पे मतलब वर्षा अधिक हो जा रही है, जिससे कि किसानों को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ में ही जो हमारे कीट और रोग हैं इनका प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, मिट्टी की नमी में और उसकी उर्वरता में गिरावट आ रही है, और जब हमारी जड़ें मजबूत नहीं हो रही तो जो हमारा सिंचाई का जल है उसकी जो गहराई में क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे पेड़ पौधों से मतलब स्रोतों में इसके माध्यम से भी हमारे यहाँ सिंचाई होती है, तो वो जब कम होंगे तो हमारे यहाँ सिंचाई के साधन भी कम होंगे, इसलिए लगातार इससे कृषकों को जोखिम होता है और लागत में वृद्धि होती रहती है, क्योंकि जब कीट और ये रोग लगेंगे तो कृषक को उपचार के लिए उसमें लागत लगेगी, इसलिए हमारे यहाँ जो एरिया है वो वर्षा आधारित है मोस्टली, तो इन क्षेत्रों में किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा बहुत ज्यादा प्रभावित होती है।
0: जी सर, बात करते हैं कृषि वानिकी की। कृषि वानिकी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद करती है?
1: कृषि वानिकी एक तरह से हम कहें तो मौसम का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर होती है।
0: जी,
1: और उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ठीक है, हमारे यहाँ ईंधन वगैरह भी आजकल बहुत चलने लगा है कोयले के यूज से, इससे जो एक जलवायु में फर्क पड़ता है, हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये वृक्ष अवशोषित कर लेते हैं और उस कार्बन को संग्रहित कर लेते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन वगैरह ये सब चीजें होती हैं। फिर क्या होता है, ये जो पेड़ होते हैं ये हमारे तापमान को भी थोड़ा सा नियंत्रित करके और उसको सूक्ष्म जलवायु टाइप का एक अच्छा क्लाइमेट बना देते हैं, और उसके साथ जो हमारी मिट्टी और मृदा होती है उसकी भी जड़ें मजबूत करते हैं ये, और उसको भी मतलब नर्चर कर देते हैं, उसको भी फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज कर देते हैं। साथ ही क्योंकि इससे इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ता है, तो जो पानी जो एक होता है बहाव के साथ में बहने वाला होता है, वो पानी बह के ना वो खेतों की ही गहराई में जाके नमी का उपयोग करने लगता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और हम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाने के बाद में क्या होगा कि जब हम इससे जो खाद हम डालते हैं वो इसके नीचे तक जाती है, इससे जो पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं वो हमारे कार्बन के संचय करती हैं खेत में, तो उससे क्या होता है, हमारी जो फर्टिलिटी होती है खेत की वो बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हमें बाहर के जो उर्वरक हैं उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, जिससे कि क्योंकि उनसे जो गैस वापस जाती है वो हमारे ये इसमें ग्रीन हाउस गैस

0: इसमें इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें भी कमी आती है। तो इसलिए कृषि वानिकी जलवायु परिवर्तन में बहुत ही दोनों तरह से मतलब बहुत ज्यादा सहायक है। जी सर।
1: सर बात करते हैं कृषि वानिकी अपनाने से किसानों को आर्थिक और पर्यावरणीय स्तर पर क्या क्या लाभ मिलते हैं?
0: अगर हम बात करें आर्थिक स्तर पे
1: जी,
0: तो आर्थिक स्तर में जब हमारा लकड़ी फल चारा, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुस्तरीय कृषि होती है, तो अगर हम एक कृषि करेंगे तो एक अलग है। अब उसमें पशुपालन का लाभ अलग मिलेगा और दूसरा आपका फसल का लाभ अलग है और पेड़ों का लाभ अलग है। पेड़ों से आप लकड़ी फल चारा औषधीय पौधे भी हमसे मतलब अतिरिक्त आय में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे मानो फसल है, फसल हमारे का नुकसान हो गया किसी वजह से, लेकिन अगर हमारे पास कृषि वानिकी के माध्यम से पशुपालन भी हो रहा है तो हमारी जो आय होगी उसमें गिरावट नहीं आएगी एकदम से, ना झटका नहीं लगेगा कृषकों को। और इसके जो पर्यावरण लाभ है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मिट्टी का संरक्षण होता है, उर्वरता में वृद्धि करती है, भूजल जो हमारा बार बार मतलब सोख लिया जा रहा है उसका पुनर्भरण होता है, जल का संरक्षण होता है, और जो हमारी जैव विविधता संरक्षण होती है, और ग्रीन हाउस गैसेस जो कि जलवायु परिवर्तन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, उनमें कमी आती है और कार्बन का संचय में वृद्धि आती है जी। और इसको हम एक इस तरह से भी मान सकते हैं कि अगर हम कहें तो जलवायु परिवर्तन एक हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, और उसमें अगर हम अभी से ही अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ये हमारे लिए एक अवसर भी है कि हम अपने देश का जो समृद्धि है उसको मतलब लंबे समय तक बचा के रख सके।
1: सर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों की बात करें तो
0: जी,
1: पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि वानिकी के लिए कौन कौन से वृक्ष और फसलें अभी उपयुक्त हैं?
0: सर हमारे यहाँ जैसे कृषि वानिकी में जो है भीमल, कचनार, बांझ, ठीक है, सेब, अखरोट, कीवी, आड़ू आदि फलदार ये वृक्ष होते हैं। इसके साथ में मंडुआ, गहत और मदिरा पारंपरिक हमारी फसलें हैं हमारे प्रदेश की, राजमा आदि, इनका हम वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें चारा भी मिलेगा, ईंधन भी मिलेगी और मिट्टी का संरक्षण भी होगा, और जब हमारी ये कृषि का फसल का भी विविधीकरण होगा तो उससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी और आय के वृद्धि के साथ साथ आय में स्थिरता भी आएगी।
1: जी सर बात करते हैं जल संरक्षण की, तो कृषि वानिकी का जल संरक्षण और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में क्या योगदान है?
0: जैसे मैंने पूर्व में भी मैंने बताया था, जैसे वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो वर्षा के जो जल होता है उसे मिट्टी में नीचे तक ले जाती है जड़ों के माध्यम से, तो उससे क्या होता है कि जल का पुनर्भरण होता है। उसके साथ में क्या होता है, वृक्षों की जो मैंने पत्तियां होती हैं वो जब जमीन पर गिरती हैं फिर उन पर पानी पड़ता है वो घुलती हैं तो वो उसी मिट्टी में मिल जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कार्बन का संचय है उससे वो होता है और मिट्टी में एक ह्यूमस करके होता है वो उसकी मात्रा बढ़ती है। इससे क्या होता है कि मिट्टी में जो अपरदन की कमी आती है, नमी में का संरक्षण हो जाता है हमारे यहाँ, और जो हमारे ये जैविक सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी गतिविधियां भी इससे बढ़ती हैं, और ये जब गहराइयां होती हैं तो ये हमारा नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी सहायता करता है, जिससे कि जो हमारे बाहर के जो हमारे केमिकल्स के आधार पर जैव फर्टिलाइजर उसमें भी कमी आती है, मृदा का जो स्ट्रक्चर उसका जो टेक्सचर होता है उसमें सुधार आता है, इसीलिए इससे आप सीधा कहें तो एक दीर्घकालिक उत्पादकता बनी रहती है और हमारी एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी मिट्टी का जो गिरावट है वो नहीं होती है, उसका एक इस लेवल बना रहता है हमेशा।
1: जी सर क्या कृषि वानिकी किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने का प्रभावी माध्यम बन सकती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जोखिम इसलिए कम कर सकती है क्योंकि इसमें बहुस्तरीय हम खेती की प्रणाली को उपयोग कर रहे हैं। अगर हमें इसमें मानो कुछ लाभ हमें कृषि से हुआ, कुछ लाभ हमें पशुपालन से हुआ, कुछ लाभ हमें वानिकी से हुआ, जब हमें तीन चार तरीके से लाभ मिल रहा है तो सिंपल है हमारी आय की वृद्धि हो रही है। जब इससे जो जलवायु परिवर्तन का जो एक माइक्रो क्लाइमेट है, जो एक हमारे लिए सकारात्मक माइक्रो क्लाइमेट जो बना रहे हैं, उससे रोगों में और कीटों के आने में कमी आ रही है, जिससे कि किसान की लागत कम हो रही है। जब लागत कम होगी और उसका मुनाफा बढ़ेगा तो ये बड़ा ही सिंपल है कि उसकी आय में वृद्धि होगी, और साथ ही इससे क्या होता है कि किसानों की फसल एक ही फसल पे नहीं रहती है, और उससे क्या होगा कि जब एक फसल पे की उसकी निर्भरता नहीं होगी तो उसका रिस्क जो होगा वो कम होगा, जोखिम कम हो जाएगा किसान, ठीक है। इसके साथ में क्या है कि कृषकों के लिए रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं। जी
1: जी बिल्कुल जी। सर बात करें कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार या संबंधित विभागों द्वारा कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान समय में चलाई जा रही हैं?
0: सर वर्तमान समय में हमारे यहाँ एक नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी चल रही है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, हरित भारत मिशन है, कैंपा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मनरेगा के अंदर वृक्षारोपण बागवानी मिशन योजना है, ये सब बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। और हमारी भारत सरकार का आपको मैं अभी का ही रिसेंट का बताऊं कि भारत सरकार इस पे एक बिल भी लाने वाली है कि इसको एक अपने लिए देश के लिए एक चुनौती मानते हुए और इस चुनौती को बहुत ही सकारात्मकता के साथ में हम किस तरीके से करें। इसका ऐसा है कि मानिए कि सर हमारा बिल कल आने वाला है, आगे जाने आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा आने वाला है, तो उससे अच्छा है कि अगर हम लोग अभी से ही थोड़ा सा हमारे जो जीवन शैली है हम उसमें सुधार करके चीजों को करें। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि साइंटिफिक आधार पर अगर एक डिग्री

0: टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है,
1: जी
0: तो उससे गेहूं की फसल में 4 से 5-6% की उत्पादकता में कमी आती है। तो आप तो समझ सकते हैं किस स्तर तक करती है। और क्योंकि इन सब चीजों को हमारा ही पर्यावरण है, तो हमें ही अपने पर्यावरण को सशक्त बनाना है, इसलिए सरकार के द्वारा और अपना जो भी ये मतलब हमारे यहाँ एनजीओ वगैरह होती हैं, उसके द्वारा इसको एक चुनौती मानते हुए इसके तत्व में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका कृषक हमारे क्षेत्र में लाभ भी ले रहे हैं और आगे भी मतलब आशा है कि सरकार इस पे एक वो सतत चीजें मतलब और स्टेप लेगी। जी
2: सर, आने वाले समय की बात करें तो आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि वानिकी भारत की टिकाऊ कृषि और पर्यावरण संरक्षण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है?
0: सर, आप ये मान के चलिए कि कृषि वानिकी हमारे जो क्लाइमेट का मौसम का जो हमारा रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर है उसका ये आधार बन सकती है, ठीक
2: जी
0: है, मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ये प्रदान कर सकती है। जैसे कि ये कार्बन के न्यूनीकरण में योगदान देगी, जो मैंने आपको बताया भूमि का क्षरण नहीं होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है पहाड़ों की भी, कि हमारी मृदा की जो उपजाऊ की लेयर है वो धीरे धीरे हटती जाती है,
2: जी
0: नीचे की जमीन हमारी मतलब उनकी उर्वरता कमी होती जाती है, ठीक है, उससे क्या होगा। दूसरा उसकी जो जैव की विविधता आती है और पर्यावरण का संरक्षण, इन सब चीजों में भी ये चीज बहुत ज्यादा अपना एक तरह से कहें तो रोल निभाएगी। और पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि हम हमेशा मतलब आपने भी सबने सुना होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि
2: जी
0: हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई कि हम लगातार अपने जंगल काट रहे हैं। तो अगर हम जंगल काट रहे हैं कहीं पे विकास के लिए, तो वो अगर हम खेती के लिए भी उन जंगलों को लगा लें, तो उससे एक तो हमारा जो वो पेड़ कट रहे हैं हम उसका पूरा बराबर कर दे रहे हैं, साथ में हम उससे आय भी प्रदान कर ले रहे हैं। और ये मतलब टिकाऊ कृषि जो मैं आप मतलब मैंने पूर्व में भी कहा कि ये हमारी कृषि को स्थिरता प्रदान कर रही है,
2: जी
0: स्थिरता है तो फिर टिकाऊ होगी होगी ये।
2: तो सर, अंत में जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसानों के लिए कृषि वानिकी अपनाने के लिए आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मेरा सिर्फ इतना ही संदेश है सभी सम्मानित श्रोताओं को और कृषकों को कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में कृषि वानिकी मतलब एक विकल्प नहीं है, ये भविष्य की आवश्यकता है। और किसान भाई वैज्ञानिक पद्धति से वृक्षों फसलों का समन्वय अपना कर अपनी आय, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण तीनों का संरक्षण करें, और सतत कृषि ही आने वाली पीढ़ियों की खाद्य और पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसानों को आज के इस जलवायु परिवर्तन के दौर में अपनी खेती को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाना है तो कृषि वानिकी प्रणाली को अवश्य अपनाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, जो जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं,
2: जी
0: अगर हम में सभी लोगों को, क्योंकि हम सभी मानव हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, तो उसकी अगर हमें चुनौतियों का बेहतर सामना करना है तो हमें इस मॉडल को अपनाना ही पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारे कहते हैं ना कि हमारी मिट्टी हमारे पास रहेगी, हमारा पर्यावरण हमारा संरक्षित रहेगा। तो अगर पर्यावरण, मिट्टी, जलवायु ये सब संरक्षित रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। जी
2: जी बिल्कुल। तो शुभम आर्या जी, आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि कृषि वानिकी न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, मिट्टी और जल संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें आशा है कि आपकी इस जानकारी से हमारे श्रोता अवश्य लाभान्वित होंगे। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नहीं नहीं सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने कृषकों का जितनी सेवा कर सके हम कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया।
3: श्रोताओं, अल्लाह आप लोगों ने सुना खेत बचाओ अभियान अंतर्गत कृषि वानिकी विषय पर कृषि विभाग लमगढ़ जिला अल्मड़ा विकासखंड प्रभारी श्री शुभम आर्या युद्धगे राजेंद्र सिंह विस्तृत क्षेत्र संकलित बातचीत। अब कार्यक्रम में अधिन का सुनो इन बात।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: श्रोताओं, संदेशाक बात कार्यक्रम में अगिन का पुल लोगों ने कर विचार बातचीत आज कर लेनो। तो श्रोताओं, आजकल बखत में मुर्गी पालन व्यवसाय हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में तेजी लोकप्रिय होने वाले एक लाभकारी व्यवसाय बन गयो। कम पूंजी, कम जाग और कम है कम बखत में ज़्यादा आय प्राप्त करना कारण यह किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगारों का बहुत साधन बन गया।

श्रोताओ, मुर्गी पालन कर वे अंडों और मांसों का उत्पादन करी जा जैक बाजार में पूर साल भर तक मांग बनी रहे, जय कारण यह नियमित आय प्राप्त हैं। यह के अलावा मुर्गियों बीटों एक उत्कृष्ट जैविक खादक रूप में प्रयोग करी जा और जैल अतिरिक्त आय प्राप्त करी जा सकें। श्रोताओ, मुर्गी पालन व्यवसाय कृषि कामक दगाड़ आसानी करी जा सको, क्योंकि परिवार कोई सदस्य में सहयोग कर सकनी। सरकार द्वारा ले विभिन्न योजनाओं के माध्यम प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और ऋण सुविधाएं ले उपलब्ध कराई जनी, जैल यो व्यवसाय के शुरू करन और आसान है जा। तो श्रोताओ, अगर मुर्गियों उचित प्रबंधन, संतुलित आहार, स्वच्छता और बखत पर टीकाकरण करी जाओ तो इन्हन में रोगों की संभावना कम है जें और उत्पादन बढ़िया। यह प्रकार मुर्गी पालन व्यवसाय कम लागत में ज़्यादा लाभ देने वाले एक सबने भल स्वरोजगार माध्यम छ, जो किसानों आय के बढ़ोन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत बढ़ोन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो श्रोताओ, यह कह लीजिए, किसान भाई बहनिया के कृषि दगाड़ दगाड़े मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए जरूर अपनाते हैं। तो श्रोताओ, यह तो आप लोगों के विचार बातचीत। अब कार्यक्रम में अगेन आप लोगों को सुनाऊं दीवान कनवाल और रेखा बिस्टा स्वर में गई हुई यह कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, दीवान कनवाल और रेखा बिस्टा के स्वर में गई हुई और कुमाऊनी लोकगीता का दगा आज ग्राम जगत कार्यक्रम के इति के समाप्त करना बखत हो। अघिन अंक में आप लोगों फिर भेंट हुई। आयल राजेंद्र सिंह बिस्ट का आज्ञा दियो। नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत आकाशवाणी के अमल लोणा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 होने को है। अब कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के दगर मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कराल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल उत्तराखंड को योग आयुर्वेद वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र बनोना के लिए राज्य सरकार एक प्रतिबद्धता दोहरे। सरकार को उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी सुदृढ़ीकरण राज्य का पर विकास पर्यटन तीर्थाटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दियल। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के भीतर टिहरी जिला भिलंगना विकास खंडे 5 ग्राम पंचायतों को चुनी गई छू। अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल पश्चिम बंगाल बटी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कराल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बता कि देश भर में 94 करोड़ है ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधा 18,880 करोड़ डब्लो है ज्यादा राशि अंतरित की जल। यो किस्त 2,18,00,000 है ज्यादा महिला किसानों को ले लाभ मिलल।
2: 20 जून पीएम किसान उत्सव दिवस इस दिन 3:45 पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में ये निधि अंतरित करके दिया जाएगा।
1: कृषि मंत्रालय के रखो कि पीएम किसान उत्सव दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करी जाल। जमे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम मुख्य कार्यक्रम में 1 करोड़ है जत किसानों को मौजूद होने आशा छू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल के रखो कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग आयुर्वेद वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना के लिए लगातार प्रयास करने। उन्होंने कहा कि नई योग नीति के माध्यम योग और वेलनेस आधारित रोजगारक नई मौक पैद करी जानी। वो आज देहरादून स्थित पुलिस लाइन में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम को संबोधित करना छी। यो मौक पर श्री धामिल नागरिकों थे रोज योग को जीवन का हिस्सा बनून और योगक संदेश को जन जन ताले पुजुणक संकल्प लूणक आह्वान करो। मुख्यमंत्री को कि रन फॉर योगा केवल एक दौड़ है बल्कि स्वस्थ जीवन सकारात्मक सोच और योगक प्रति जन जागरूकता बढ़ोना सशक्त अभियान छू। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत स्वस्थ समाज निर्माण की दिशा में एक जरूरी कदम छू।
3: पूरी दुनिया के अंदर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने लगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज दुनिया के 190 से भी अधिक देश योग दिवस मनाते हैं और योग आज जन जन का योग घर घर का योग बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूंकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर पूरे महीने भर चलते हैं ये सभी को प्रेरित करते हैं सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।
1: प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को नई ऊंचाइयों ताले पुजुणा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों सुनियोजित विकास और स्थानीय युवाओं कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने यह एक भीतर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कई जरूरी कार्यक्रमों और योजनाओं को मंजूरी दी गई छू।

0: राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना के लिए 18 प्रमुख आयोजनों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करी गई छू। एक दगड़े 3000 है ज्यादा युवाओं को पर्वतारोहण, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और दुहर साहसिक गतिविधियों पर प्रशिक्षण दी जाल। जैल उन्हें लीजिए रोजगारक नई मौक बढ़ाल। पर्यटन सचिव धीराज गरवयाल बता कि सरकार का उद्देश्य पर्यटन को केवल एक उद्योगक रूप में विकसित करण है, बल्कि यको स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनूण और व्यापक रोजगार सृजनक प्रभावी माध्यम बनूण छू।
1: बोर्ड की जब बैठक हुई है तो उसमें पूरे साल का हम लोगों ने एक कैलेंडर फाइनल किया है, जिसमें अल्ट्रा मैराथन को तो हमने सम्मिलित किया ही है और साथ ही साथ आपको देखा हुआ सूर्य देवभूमि चैलेंज के नाम से ट्रेल रनिंग भी हम लोगों ने करवाया था, तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया है। और जितने भी एक्टिविटीज हम लोग सारे जनपदों में हम लोग करते हैं, चाहे हम नेशनल पैराग्लाइडिंग गेम्स की बात करें, एक्यूरेसी गेम्स की बात करें, चाहे उस कंपटीशन की बात करें या राफ्टिंग के संबंध में हो, इसके संबंध में डिटेल में हम लोगों ने पूरे वर्ष का एक कैलेंडर जारी किया है।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल कह रखो कि उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी सुदृढ़ीकरण राज्यक पूर्व विकास, पर्यटन, तीर्थाटन, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करल। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को राज्य महत्वाकांक्षी और सामरिक दृष्टि से जरूरी परियोजना बतैबेर यह कामों को तय वक्त में पूरा करने पर जोर दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना चारधाम यात्रा, विशेषकर श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम में ऊर्णवाल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ऊर्ण जाण को जद भल सुरक्षित और आधुनिक बना ली। मुख्यमंत्री आज देहरादून में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार के नेतृत्व में आई एक प्रतिनिधि मंडलक दगड़ राज्य में रेलवे अवसंरचना विस्तार पर चर्चा करी। बैठक में मुख्यमंत्री कर्णप्रयाग बागसर रेल लाइन और किच्छा खटीमा रेल लाइन परियोजनाओं को ले क्षेत्रीय संतुलित विकास और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए जरूरी बतावेर इनमें अगले कार्रवाई झट करने का आग्रह करो। टिहरी जिला भिलंगना विकासखंड 5 ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के भीतर चुनी जा रो। खंड विकास अधिकारी विपिन सिंगल बता कि चुनी गई ग्राम पंचायतों में ठेला, नैलचामी, बुड़केदार, पाक और किरेत कमेर शामिल छन। खंड विकास अधिकारी कोण छो कि अलग अलग विभागों के दगड़ल चैनल वाली योजना के भीतर आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाई जाल, जेल गाँव वालों को भल सेवाएं मिल सकल।
3: भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के घटक के रूप में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बिलंगना से 5 गांवों का चयन हुआ है, जिसमें से कि वो 5 गांव किरेत, पाक, फोर्ट बुटा केदार और धनसाणी, इन सब गांवों का चयन हुआ है, जिसके अंतर्गत की उन ग्राम पंचायतों में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का कोड, वहाँ की कुल जनसंख्या और उस ग्राम सभा में जितनी अनुसूचित जाति की जनसंख्या उसका हमें ब्यौरा देना है। इसके साथ साथ उनके कौशल विकास, महिलाओं के कौशल विकास के लिए स्वच्छता, आजीविका प्रवर्धन और लाभार्थी के लिए संपत्ति निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में आधारभूत सुविधाओं का पूर्व विकास कर गांव वालों के जीवन स्तर में सुधार लूं छू। योजना के भीतर सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, स्वच्छता, विद्युत, आवास और दुहर जरूरी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाए। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के भीतर हरिद्वार में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कामों में तेजी लाई जाने। म्याल क्षेत्र में सड़क, पुल, पार्किंग और दुहर जरूरी सेवाओं सुविधाओं से जुड़ी निर्माण काम चरणबद्ध तरीकल पूरी करी जानी। यही क्रम में अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती बैरागी वाला और श्रीयंत्र क्षेत्रक जांच कर अलग अलग निर्माण कामों की प्रगति को देखो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को सभी परियोजनाएं तय वक्त सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता दगड़ पूर्ण करने का आदेश दी। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को आदेश दी कि निर्माण कामों में कोई प्रकार की ढिलढाली नहीं होनी चाहिए और सभी परियोजनाएं तय वक्त में पूरी होनी चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं

0: दस्त जारी कराल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल उत्तराखंड को योग आयुर्वेद वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र बनू रख लीजिए, राज्य सरकार एक प्रतिबद्धता दोहरे। सरकार को उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी सुदृढ़ीकरण, राज्य का विकास, पर्यटन तीर्थाटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दियल। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भीतर टिहरी जिला भिलंगना विकास खंड की 5 ग्राम पंचायतों को चुनी गई छू। यह के दगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:40 हुए हैं। अब समय हो चुका है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं गाइड फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है मोहम्मद रफी की, संगीत दिया है SD बर्मन ने और बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने।

अभी आपने सुना गाइड फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में कृष फिल्म का ये गीत। बोल नासिर फराज के हैं, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हाँ मैंने भी प्यार किया है फिल्म का यह गीत, अलका याग्निक की आवाज में बोल समीर के हैं, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आइए अब सुनते हैं मुझसे शादी करोगी फिल्म का यह गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान के गाए मुझसे शादी करोगे फिल्म के इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सबरस।

0: कार्यक्रम की पहली पेशकश में अभी आपने सुनी नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में ये नगमा, कलाम था जावेद अख्तर का।
1: कोई सामान मत लाया करो,
2: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो, सारा सामान ISI का ही है।
1: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
2: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
1: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।

0: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: सबरस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए आप सुनते हैं निदा फाजिल का कलाम। आवाज है जसविंदर नरोला की।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को है। अब स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। फीफा विश्व कप में सह मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। नौवें दिन अमेरिका का सामना ऑस्ट्रेलिया से और ब्राजील की टीम हैती के साथ खेलेगी। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। ग्वांगडोंग में मेजबान चीन ए के हाथों हार के बाद विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक मिला। FIH नेशंस कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चिली से होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का अंतिम मैच कल चेन्नई में। और नीरज चोपड़ा आज से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फुटबॉल के साथ। फीफा विश्व कप के नवे दिन 4 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप बी में मेजबान अमेरिका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड और मोरक्को की टीमें आमने सामने होंगी। तीसरा मैच ब्राजील और हैती के बीच खेला जाएगा। चौथा मुकाबला तुर्की और पैराग्वे के बीच होगा। इससे पहले 8वें दिन भी बेहद दिलचस्प मुकाबले खेले गए। कतर को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपना मैच ड्रॉ खेलकर 1 अंक हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: हर पल धड़कने बढ़ाने और विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के रोमांच को आगे बढ़ाते विश्व कप के एक से बढ़कर एक मुकाबलों के बीच कनाडा ने वैंकूवर में अपने समर्थकों की तरफ से मिलते प्रोत्साहन के साथ कतर को एक तरफा अंदाज में 6-0 से करारी शिकस्त देकर विश्व कप फुटबॉल के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत से उसने नॉकआउट राउंड में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। जोनाथन डेविड ने अपनी टीम के लिए हैट्रिक लगाई। वे इस विश्व कप में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बाद एक मैच में 3 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कतर के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिले, जिससे उसकी टीम 9 खिलाड़ियों तक से मिट गई। कनाडा की टीम ने इसका पूरा फायदा उठाया और ताबड़तोड़ हमले कर एशियाई दिग्गज टीम कतर को पूरे मैच के दौरान संभलने का मौका ही नहीं दिया। हाफ टाइम तक कनाडा 3-0 से आगे था। इस मैच में मेजबान टीम को गोल के रूप में एक तोहफा भी मिला, जब 75वें मिनट में मोहम्मद मनाई ने अपने गोलकीपर को चकमा देते हुए आत्मघाती गोल कर दिया। उधर ग्वाडालाजारा में लुइस रोमो ने दक्षिण कोरिया की रक्षात्मक चूक का फायदा उठाते हुए गोल किया, जिससे सह मेजबान मेक्सिको 1-0 से जीत हासिल करके मौजूदा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मैच जब गोल रहित बराबरी पर चल रहा था, तब खेल के 58वें मिनट में दक्षिण कोरिया के गोलकीपर किम स्योंग ग्यू और डिफेंडर ली ग्यू ह्यू के बीच टक्कर होने से गेंद पेनल्टी एरिया के अंदर छूट गई। रोमो के पास ये सुनहरा मौका था और उन्होंने गेंद को आसानी से खाली नेट में डालकर गोल कर दिया, जो बाद में निर्णायक साबित हुआ। ये उस टीम के लिए एक बड़ी जीत है, जो 2022 में ग्रुप चरण में जीत हासिल करने में नाकाम रही थी। मेक्सिको के खिलाड़ियों ने मैदान पर जश्न मनाया। उधर एटलांटा में टेबोहो मोकेना ने आखिरी क्षणों में पेनल्टी को गोल में बदलकर न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को हार से बचाया, बल्कि चेक गणराज्य के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ कराकर विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप ए में उसे एक महत्वपूर्ण अंक भी दिलाया। मर्सिडीज बेंज स्टेडियम में 6वें मिनट में मिखाल सादिलेक ने चेक गणराज्य को बढ़त दिलाई। चेक गणराज्य जब जीत की तरफ बढ़ रहा था, तब थापेलो मासेका का लंबी दूरी का शॉट पेनल्टी एरिया में चेक प्रतिद्वंद्वी पावेल सुल्क के

0: को स्पर्श कर गया। मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान आंसू बहाते हुए दिखाई देने वाले मोकेना ने 83वें मिनट में पेनल्टी स्पॉट पर कदम रखा और चेक गणराज्य के गोलकीपर मातेज कोवर के पास शॉट मारकर गोल कर दिया। इस ड्रॉ से दक्षिण अफ्रीका के भी अगले दौर में पहुंचने की संभावना बन गई है। चौथे मैच में इंग्लवुड में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी योहान मंजाबी के दो गोल की मदद से स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी के मैच में बोस्निया हर्जेगोविना पर 4-1 से शानदार जीत हासिल की। मंजाबी ने मैदान पर उतरने के 3 मिनट बाद ही मैच के 74वें मिनट में एक शानदार वॉली शॉट लगाकर विश्व कप में अपना पहला गोल किया। बोस्निया के टेरिक मुहारे मोविच को खतरनाक टैकल के लिए लाल कार्ड दिखाए जाने के कारण उसकी टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। अपना दूसरा विश्व कप खेल रही इस टीम के पास अब भी नॉकआउट चरण में पहुंचने का मौका है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: ये थी फुटबॉल की बात और अब चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को मात दी, वहीं अनमोल खरब हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: असम की 26 वर्षीय खिलाड़ी अश्मिता ने विश्व की 99वें नंबर की खिलाड़ी किम को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 21-18 से हराया। पहले गेम में अश्मिता और किम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और एक समय तक स्कोर 14-14 से बराबरी पर था। इसके बाद अश्मिता ने धैर्य का परिचय देते हुए लगातार 4 अंक हासिल किए और गेम अपने नाम कर लिया। पहले गेम की गलती से सीख लेकर किम ने दूसरे गेम में बेहतरीन शुरुआत की, वहीं अश्मिता दूसरे गेम की शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आई। अश्मिता एक समय पर 2-8 से पीछे थी, हालांकि अश्मिता ने शानदार वापसी करते हुए अंतर 16-18 तक कर दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 अंक जीतकर अंतिम 4 में अपनी जगह सुनिश्चित की। इस साल BWF टूर प्रतियोगिता में ये उनका पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा। अश्मिता चोटिल होने के कारण 3 महीने तक खेल से बाहर रही थी और उन्होंने मई में वापसी की थी। वापसी के बाद उन्होंने चाइना मास्टर सुपर 100 और मलेशिया मास्टर सुपर 500 प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। अश्मिता कल फाइनल में जगह बनाने के लिए कोरिया की पार्क गा यून का सामना करेंगी। दूसरी ओर अनमोल प्रतियोगिता से बाहर हो गई। विश्व रैंकिंग में 51वें स्थान पर काबिज अनमोल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रही और एक घंटे तक चले मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 36वें स्थान की खिलाड़ी और चौथी वरीयता प्राप्त हान कियानशी से 21-14, 15-21, 13-21 से हार गई। अनमोल के बाहर होते ही प्रतियोगिता में भारत की एकमात्र उम्मीद अश्मिता ही बची हैं। अब भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की निगाहें कल होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में अश्मिता पर होंगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
1: चीन के ग्वांगडोंग में आज भारत को विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में मेजबान चीन ए के हाथों 2-3 से मिली हार से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मुकाबला 2-2 से बराबरी पर था और भारत के आदित्य मेहता निर्णायक फ्रेम में ली चंगजी के खिलाफ लड़खड़ा गए और खिताब के लिए हुए इस निर्णायक मुकाबले में पिछड़ गए। भारत के स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने चंगजी के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। मेहता इसके बाद जू जियारुई से 34-66 से हार गए। डबल्स मुकाबले में आडवाणी और मेहता की भारतीय जोड़ी जियारुई और पैन यिमिंग से हार गई। आडवाणी ने एक बार फिर अपने सटीक खेल से भारत की वापसी कराई। 11 बार के राष्ट्रीय चैंपियन ने जियारुई के खिलाफ 82-4 की शानदार जीत हासिल की, लेकिन निर्णायक फ्रेम में मेहता अपनी लय नहीं ढूंढ पाए और भारत को जीत नहीं दिला सके। अब चलते हैं हॉकी के मैदान पर। FIH नेशंस कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का मुकाबला चिली से होगा। भारतीय टीम को इस मैच को जीतने का बेहद मजबूत दावेदार माना जा रहा है।
3: टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय महिला हॉकी टीम निचली रैंकिंग वाली चिली के खिलाफ अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी ताकि FIH प्रो लीग में वापसी की ओर अगला कदम रख सके। भारत ने पूल ए में 3 मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम को अगले सत्र में प्रो लीग में वापसी के लिए नेशंस कप जीतना ही होगा। भारतीय टीम पिछले सत्र में 16 मैचों में सिर्फ 10 अंक लेने के बाद प्रो लीग में सबसे नीचे रहा और नेशंस कप में खिसक गया था। 8 देशों के FIH नेशंस कप के विजेता को अगले सत्र में प्रो लीग में जगह मिलेगी। मौजूदा रैंकिंग और फॉर्म को देखते हुए भारत का पलड़ा चिली पर भारी है। विश्व रैंकिंग में भारत 9वें और चिली 13वें स्थान पर है। सेमीफाइनल से पहले मुख्य कोच शोर्ड मारिन को कुछ पहलुओं पर काम करना होगा। 17वीं रैंकिंग वाली उरुग्वे

0: को हराने के लिए भारत को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ड्रैग फ्लिकर दीपिका शानदार फॉर्म में है और 4 गोल कर चुकी हैं। नवनीत कौर, कप्तान सलीमा टेटे और लालरेम सियामी भी 1-1 गोल कर चुकी हैं। भारत के लिए एकमात्र फील्ड गोल दीपिका सोरेंग ने किया है। भारत को अगले मैचों में और फील्ड गोल करने होंगे। इसके लिए फॉरवर्ड पंक्ति को मौके बनाकर फिनिशिंग तक ले जाना होगा। अगर भारत अपने पिछले प्रदर्शन को जारी रखने में सफल रहता है तो खिताब की तरफ कदम बढ़ाने से उसे रोकना विरोधी टीम के लिए काफी मुश्किल होगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: फुटबॉल हॉकी की बात हमने कर ली और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का अंतिम मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। तीसरे मुकाबले से पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है और भारत इस मैच में भी जीत का प्रबल दावेदार है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी भारतीय टीम का इरादा तीसरे मैच को जीतकर क्लीन स्वीप का होगा। टीम की निगाह केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर रहेगी। राहुल की वनडे टीम में जगह को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा है, लेकिन जायसवाल शीर्ष क्रम में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपनी जगह पक्की करने के लिए बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। उधर किशन ने लखनऊ में शतक लगाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ऐसे में इस सीरीज के हर मैच में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की पैनी निगाह रहेगी। बीसीसीआई ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद इस मैच के लिए हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। यह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह ले सकते हैं, जिन्होंने इस श्रृंखला में अभी तक दोनों मैच खेले हैं। इससे भारत को चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की अनुपस्थिति में निचले क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज का विकल्प भी मिलेगा। इससे टीम प्रबंधन को ब्रिटेन के दौरे से पहले उनकी फॉर्म और फिटनेस का आकलन करने का मौका मिलेगा। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है तो उसने इस श्रृंखला में एकमात्र टेस्ट मैच और पहले 2 वनडे में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है। उसकी टीम हालांकि जीत के साथ श्रृंखला का समापन करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। इसके लिए उसे खेल के तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: क्रिकेट की एक और खबर, दांबुला में वनडे फॉर्मेट की त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका ए का सामना भारत ए से होगा। आज अफगानिस्तान ए आखिरी लीग मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ 103 रन के बड़े अंतर से हार गया। इस वजह से भारतीय टीम की फाइनल में जगह सुनिश्चित हो गई। और अब बात एथलेटिक्स की। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये नीरज का इस एथलेटिक्स सत्र में पहला मुकाबला है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज रात दोहा में डायमंड लीग में जज्बे और जुनून के साथ प्रतियोगिता का आगाज करेंगे। इस स्टार खिलाड़ी ने 2023 में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर के साथ खिताब अपने नाम किया था। वहीं 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरा स्थान भी हासिल किया। पिछले वर्ष नीरज ने इसी मैदान पर 90 मीटर का आंकड़ा भी पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उन्हें 90.23 की दूरी प्राप्त करने के बाद भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा कुछ समय से चोट के कारण मैदान से बाहर थे। नीरज हाल ही में स्विट्जरलैंड में ऑफ सीजन प्रशिक्षण शिविर में पीठ की चोट से उबर रहे थे। भारत का ये करिश्माई खिलाड़ी आखिरी बार पिछले वर्ष सितंबर में टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मैदान पर उतरा था। ऐसे में लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे नीरज के लिए मैदान पर कड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। नीरज ने कहा, इस प्रतियोगिता के लिए स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और पूरी तरह से फिट हैं।
4: दिस इज माय फर्स्ट कंपटीशन फॉर द सीजन, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई फील रियली गुड, आई फील फिट।
3: नीरज को श्रीलंका के खिलाड़ी सहित अन्य खिलाड़ियों से कड़ी चुनौती मिलेगी। वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक श्रीलंका के रुमेश पथिरागे का भी हालिया प्रदर्शन शानदार रहा। पथिरागे ने इस महीने की शुरुआत में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का शानदार थ्रो किया था। त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा विश्व चैंपियन केशॉर्न वॉलकॉट, ग्रेनेडा के पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स और केनिया के जूलियस योगो भी शामिल हैं। ऐसे में आज सभी प्रशंसकों की निगाहें वापसी कर रहे नीरज और एक रोमांचक मुकाबले पर होंगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और एक अच्छी खबर, चीन के गुइयांग में विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता की

0: औपचारिक शुरुआत हो गई है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
3: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy, हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची, वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट्स है।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति

0: देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
1: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है।

0: अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country.
3: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana.

है तुम्हारा फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम इंद्रधनुष की अगली प्रस्तुति में लीजिए अब सुनिए शादी करके फंस गए यार फिल्म का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

हंगामा फिल्म के इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब समय है फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

फिल्म संगीत के साप्ताहिक फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त दीप प्रकाश का प्यार भरा नमस्कार। गीतों में बसते हैं एहसास, धुनों में छुपे हैं कई अरमान। फिल्मी संगीत की इस महफिल में आपका है दिल से सम्मान। तो आइए सुरों के साथ कुछ पल गुजारें, नए पुराने नगमों के साथ यादों को फिर से संवारें। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं क्रिश फिल्म से सोनू निगम और श्रिया घोषाल की आवाज़ों में। बोल नासिर फराज के हैं और संगीत से सजा है राजेश रोशन ने।

इस गीत के लिए हमें अनुरोध किया है ताजपुर मोरवा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री पिंकी, रिंकी, रितु, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, डोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी।

अभी आपने सुना क्रिश फिल्म का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आइए अब सुनते हैं गुरु फिल्म का ये गीत ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में, बोल गुलजार के हैं।

आवाज़ें हैं AR रहमान और चिन्मयी श्रीवास्तव की। इस गीत के लिए हमें अनुरोध भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेद कुमार वर्मा। इस गीत के लिए हमें अनुरोध कर रहे हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी गरीश मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे, नारायण भाऊ खर्चे और उनके परिवार के सभी सदस्य।

फिल्म संगीत का साप्ताहिक फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं और इस फिल्मी सफ़र में मैं हूं आपका हम सफ़र, आपका रेडियो दोस्त दीप प्रकाश। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आप सुनते हैं, आदमी खिलौना है फिल्म से अलका याग्निक की आवाज़ में और मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ में। बोल समीर ने लिखे हैं और सरगम में बांधा है नदीम श्रवण ने।

इस गीत के लिए हमें अनुरोध भेज रहे हैं नाज मंजिल महसूल सीतागढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम, नदीम अकरम समीम अकरम अमन अकरम, ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी शर्मा बच्चू शेख और चीना शेख। इसी गीत के लिए हमें अनुरोध कर रहे हैं फवाद बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर, नूर महल महसूल से उमेरा नाज सुमेरा नाज अभिया नाज अरहान बाबू हमदा बाबू और मुलजमी बाबू। तो सुनते हैं आप सभी की अनुरोध पर आदमी क्यों नहीं फिल्म का ये गीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में लीजिए अब सुनिए बादशाह फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक, अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में। संगीत अनु मलिक ने दिया है और बोल समीर के हैं।

इस गीत के लिए हमें अनुरोध भेज रहे हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन पारासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन पारासर, अमित, सुमित, छोटू, बी के सुमैया और उनके साथी, महाराजा रेतियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से हमें अनुरोध भेज रहे हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और उनके परिवार के सभी सदस्य।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश में आइए आप सुनते हैं लावारिस फिल्म का गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। संगीत राजेश रोशन का है और बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। इस गीत के लिए हमें अनुरोध कर रहे हैं राज पैलेस मनमाऊ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इस गीत के लिए हमें अनुरोध भेज रहे हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, उनके परिवार के सभी सदस्य।

फिल्म संगीत के साप्ताहिक फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध के आखिरी फरमाइश पर आप लीजिए आपको सुनाते हैं फिल्म दिल चाहता का ये गीत, शान कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत से सजा है शंकर एहसान लॉय ने। इस गीत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं मोटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से किशान सोता, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। तो लीजिए सुनिए आप सभी के अनुरोध पर दिल चाहता है फिल्म का ये गीत।

अभी आप फिल्म संगीत का साप्ताहिक फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाइस नगमे के साथ।

दिल चाहता है फिल्म के इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का फरमाइशी साप्ताहिक कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अब यहीं पर संपन्न हुआ। अपने रेडियो दोस्त दीप को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना मिताली सिंह और जगजीत सिंह से ये नगमा। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आइए आप सुनते हैं इसरार अंसारी का कलाम, फनकार हैं चंदन दास।
1: इतना जिंदगी, क्योंकि चंदन दास की आवाज की लचक, अल्फाज की अदायगी और सुरों से आंख मिचौली खेलने के अंदाज ने इनकी एक अलग पहचान बना दी है, जिसे बार बार सुनने को गुनगुनाने को जी चाहता है। मैं जनाब चंदन दास से कहना चाहता हूं कि इस महफिल के हाजरीन तो खुशकिस्मत हैं, जो यहां मौजूद नहीं वो शायद कह रहे होंगे कि घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, तू ना आता तेरी आवाज तो आती रहती। अब आप हैं चंदन दास हैं और है वो माहौल खुमार का, क्योंकि ये है एक महफिल।

आपकी तालियों के जोश को सुनकर मुझे एक लतीफा याद आ रहा है। एक गाने वाले थे, उनके पड़ोसी को भी एक दिन जोश आ गया, तो वो उनके घर आए और बोलने लगे कि साहब आपका बाजा चाहिए। थोड़ी देर के बाद उनकी बीवी आई और बोली कि आपका तबला भी चाहिए। तो जब वो जाने वाली थी तो गाने वाले ने पूछा कि साहब आपके घर में कोई महफिल है या कोई गाने का प्रोग्राम है? वो बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम जरा जल्दी सोना चाहते हैं आज। अब लीजिए पंजाबी के इस दौर से निकलें और फिर से आ जाएं गजल के दौर में। बहुत सी फरमाइशें हैं, सबसे पहले दो गजलें पेश कर रहे हैं, दोनों हम रदीफ गजलें हैं। चित्रा जी गा रही हैं सुदर्शन फाकर की गजल और मैं गा रहा हूं ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल।

सुगम संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आइए अब सुनते हैं साहिर होशियारपुरी का कलाम। आवाज़ें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की।

जगजीत सिंह के गाए से नगमे के साथ हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कृष फिल्म के इस गीत के साथ। गीत का आवाज़ दी है सोनू निगम और श्रिया घोषाल ने। बोल इब्राहिम अश्क के हैं और संगीत निर्देशन राजेश रोशन का है।

0: अभी आपने एक कार्यक्रम का गीत सुना।
1: कार्यक्रम की अगली पेशकश में आइए अब सुनते हैं आंखें फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत निर्देशन रवि का है। आइए सुनते हैं फिल्म आंखें का ये खूबसूरत गीत।

संगीत कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत से सजा है आर डी बर्मन ने और धुन बनाई है राजेश।

अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में शैलेंद्र के लिखे गीत को। संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है गाइड।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म गाइड का ये खूबसूरत गीत। फिल्म संगीत के समापन में आइए आप सुनते हैं हंगामा फिल्म का ये गीत अभिजीत अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने। तो ये सुनते हैं फिल्म हंगामा का ये खूबसूरत गीत।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे

0: भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्ण ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक